कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टेड इनफ? आज मैं एक बड़ी सिंपल सी कहानी सुनाना चाहूंगी आपको. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं आफरीन, आपके साथ राइटर अनमिशी मॉर्निंग्स. और कहानी है बहुत ही आसान सी, कुछ कि मैं मेरी फ्रेंड के घर गई थी, थकी हारी सी थी और बहुत ही एंग्रॉस्ड हो गए थे हम बातों में, कि उसने जब कॉफ़ी ला कर दिया ना, वो कॉफ़ी ठंडी हो गई थी. तो उससे पूछा कि अरे यार तेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, मैं तुझे गर्म करके दे दूँ. एंड आई डिडंट वांट टू बॉदर हर, सो आई वाज लाइक नहीं ठीक है चलिए मैं पी लेंगी. अब कुछ दिन बाद मैं जब फिर से गई उसके घर पर, तब बहुत थकी हुई थी और मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार कॉफ़ी दे दे. तब किचन में गई और वो कॉफ़ी जो बनी हुई थी कुछ घंटे पहले, वो वही लेकर आई. इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही थी या वो मेरे साथ रूड थी. जब उसकी मम्मी ने उसको पूछा कि यार तो कॉफ़ी क्यों नहीं गर्म करी है, तो शी वॉज लाइक कि नहीं ये पी लेती है ठंडी कॉफ़ी. कहीं ना कहीं मैंने खुद अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे और वो लोग बस वही फॉलो कर रहे थे. ऐसा कई बार होता है ना जिंदगी में, हम काइंड होने की कोशिश में, कंपैशनेट होने की कोशिश में अपने आप के स्टैंडर्ड्स और लो करते जाते हैं. हम अपने आप को अनकंफर्टेबल कर देंगे भले ही चाहे दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए. अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें खुद को ही एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, है ना. मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइटर अनमर्शी. बने रहेगा हमारे साथ अनमर्शी, इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। I love you, but मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, I love you, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: वाला,
1: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलाऊंगी।
2: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब, फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
1: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलाऊंगी।
2: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब, फॉर ब्राइट फ्यूचर।

0: डायमंड्स गोल्डन समर के साथ बाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस और सुनो देयर इज मोर विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द जीसीसी विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: शिल्पा राव अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स यार फ्रॉम द मूवी लुटेरा राइट हियर ऑन मिर्ची. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्टरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और मैं ना कहती थी भाई देखो हवा में ड्राइनेस है जो एलर्जी के बहुत बड़े शिकार हैं मेरी तरह. फिलहाल मेरी नाक बंद है सुबह से स्नीज कर रही हूँ और उसकी शिकार तो मैं बन गई हूँ क्योंकि हवाएं इतनी ड्राई चल रही हैं. मतलब मौसम ड्राई है और हवाएं भी चल रही हैं तो भाई अपना ख्याल रखो यार. अप्लाइज टू मी एज वेल एक्चुअली.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: वेदर अपडेट.
0: देखो वेदर तो ये कह रहा है आज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मिनिमम 32 पर जाएगा. और अगर ह्यूमिडिटी देखेंगे तो 38% पर है. थोड़ा सा ड्राइनेस ही कह सकते हैं और हवाएं चल रही हैं भाई 13 किलोमीटर पर आवर पर हवाएं चल रही हैं. और कहा तो ये भी चाहता है दैट बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाले दिन अब से कतर में अब शुरू होने वाले हैं. और ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भाई अब तक फिर क्या था अगर ये गर्मी नहीं थी. और ऐसा हमेशा हर साल एक मोमेंट आता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि भाई कतर में इतनी गर्मी चल रही है एंड सडनली एक न्यूज़ आती है कि नहीं भाई ये थोड़ी ना गर्मी थी, गर्मी तो अब से चालू होगी वो भी अगले 40 डेज तक. हाँ जी, अब ये खबर भी कुछ एक दो दिन पहले आई हुई है क्योंकि कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट अनाउंस कर चुका है दैट अल हक्का स्टार इसकी जो अपीयरेंस है ये 3rd of July को ये आ चुकी है और थर्ड फेज ऑफ समर सीजन हम अब एंटर कर ही चुके हैं. सो नो वरीज भाई, एटलीस्ट हमें पता है कि अब ये थर्ड फेज है, 40 दिन तक गर्मी रहेगी और उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा और हमेशा की तरह होता ही है. तो चलिए अगली बार गाने की तरफ बढ़ते हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में फ्रॉम द मूवी दिलवाले. राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
0: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा,
10: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

शान की आवाज में सावरिया का ये खूबसूरत गाना राइटर और मिर्ची और कुछ लोगों की डेब्यू मूवी इस तरह से हमें याद रहती है, जैसे दिस मूवी, रणबीर कपूर की मूवी तो याद नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स यार ये गाना जरूर याद है। और कुछ लोग कम बैक इस तरह से करते कि यार वो मूवीज आइकॉनिक बन जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कम बैक मूवीज की अगर बात करें ना, तो बहुत सारे कम ही एक्टर्स हैं मैं कह सकती हूँ कि यार जो कम बैक करते हैं और उनकी ये मूवीज सुपर डुपर हिट होती है। फॉर दैट मैटर इफ आई से दैट माधुरी दीक्षित का कम बैक आज एक्चुअली वॉज नॉट सो गुड, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस है, स्पेशली एक्ट्रेसेस का कम बैक इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट नॉट फॉर दिस phenomenal actress and I am talking about Shridevi ki movie English jo bahut saal baad jab ye movie mein aayi thi and let me tell you ek cult classic movie ban gayi thi। and English Winglish ki baat main Qatar mein kyun kar rahi hu, kyunki Qatara in cooperation with the embassy of India is hosting a public screening of English Winglish, ha ji, wo bhi on 14th of July 2026 sham 6 baje at the drama theater बिल्डिंग नंबर 16। देखिए अब ये जो इवेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ कतारास कल्चरल प्रोग्रामिंग एंड इट इनवाइट्स ऑडियंसेस टू एंजॉय दिस एक्लेम्ड इंडियन फिल्म। लेकिन इसके लिए क्या है ना, आपको प्रायर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अब सोचिए भाई, इंग्लिश जैसी मूवी जो हमने थिएटर में देखी होगी, नहीं देखी होगी पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर ये एक ऐसी मूवी है OTT प्लेटफॉर्म पर या TV पर हम सभी ने देखी है, लेकिन आई थिंक सो दिस इज वन सच मूवी जो one of the rarest movie of Indian cinema जो family के साथ में like properly हम देख सकते हैं, and I am quite fan of such content जो family के साथ देखा जाए, so why not this yeah? and Shridevi एक legendary actress रह चुकी है। और आजकल की जनरेशन ना, मैं कहती हूँ Gen Z, they are not aware of such talent जिनको हमने जिया है, जिनको हमने हमारे पूरे एरा में देखा है, सो वेल why नॉट, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप इंग्लिश को कतारा में जाकर देखें। बस इसके लिए प्रायर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा, आप कतारा के ऑफिशियल पेजेस पर जाकर ये ज़रूर कर सकते हैं। मीन वाइल जहाँ इंग्लिश की बात की है, प्लेइंग वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑफ दिस मूवी, अमित त्रिवेदी की आवाज़, वो इनोसेंस मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी यार श्रीदेवी की। एंजॉय दिस ट्रैक, माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनुचित हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता है तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
3: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: वेल दैट इज नीरज श्रीधर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. और एक सवाल है आपके लिए दोस्तों, देखिए अगर मैं कहूँ दैट वर्ल्ड कप कतर फिर से आ रहा है तो आपके दिमाग में तो ऑफकोर्स फुटबॉल ही आएगा. नो लेकिन इस बार गेम थोड़ा सा अलग है. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्टरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए कतर अब ऑफिशियली फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 होस्ट करने वाला है. यस. और देखिए और सबसे खास बात यह है दैट अरब वर्ल्ड में पहली बार बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप होने जा रहा है. एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट कतर इज सेटिंग दिस बेंचमार्क ऑफ द फर्स्ट टाइम होस्टिंग सच वर्ल्ड कप. एंड वी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. देखिए अब अगर ये टूर्नामेंट की बात करें तो 27 अगस्त से लेकर 12 सितंबर 2027 तक चलने वाला है. ये 32 टीम्स रहेंगी, 92 मैचेस और सब कुछ एक ही शहर में दोहा में होने वाला है. बड़ा ऑब्वियस, मतलब फैंस एक ही दिन में मल्टीपल मैचेस देख सकेंगे और दोहा मेट्रो पूरे एक्सपीरियंस को सीमलेसली कनेक्ट करेगी. ये थोड़ा सा डेजा वूसा लग रहा है आपको, राइट? वेल लुसेल एरेना में सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होस्ट करने वाले है, जबकि अल अतिया एरेना, दोहेल अरेना और अल जनूब स्टेडियम जैसे बास्केटबॉल अरेना में कन्वर्ट किए जा रहे हैं. एक्शन से भर जाने वाला है ये सब कुछ. वेल एक बात शायद आपको नहीं पता होगी दैट कतर ने 2006 के बाद पहली बार ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया है एज होस्ट नेशन. सो होम क्राउड के सामने अपनी टीम को चीयर करने का मौका भी मिलने वाला है. वेल देखा जाए तो ये सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट की बात नहीं हो रही है, इट्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग और कतर का ये विजन कि ग्लोबल इवेंट्स को किस तरह से सस्टेनेबल और फैन फ्रेंडली बनाया जा सकता है दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल सेट करता है. मतलब अगर 2022 में बात करें तो दुनिया फुटबॉल के लिए हमारे कतर आई थी, अब 2027 में दुनिया बास्केटबॉल के लिए कतर आने वाली है. एंड ऑनेस्टली अगर आपने कभी लाइव बास्केटबॉल गेम देखा नहीं है ना, देन आई थिंक सो दिस इज योर परफेक्ट चांस.
1: मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं.
0: चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में अगले गाने की तरफ.
1: पता नहीं
0: राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. माइक से दिल तक आफरीन के साथ. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: वेल, धुरंधर का ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, मधुमंती बागची और जैस्मिन सैंडर्स की आवाज में, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:02 की तरफ। और अगला गाना धमाल 4 से आपकी तरफ आता हुआ, और फिर उसके तुरंत बाद लेकर आ रही हूँ मैं धमाल वाली स्कोर। भाई कुछ अलग ही चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में, सब कुछ देखेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद माइक से दिल तक आफरीन। इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल Center, Qatar's largest private medical center. Mirchi, fresh maal.
2: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी।

0: इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने। म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Well, that was धमाल 4 का गाना और चलिए जरा धमाल स्कोर्स पर नजर डालते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। जी वेलकम बैक। हाँ जी मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और वर्ल्ड कप अब उस स्टेज पर आ चुका है जहां जीत ट्रॉफी से सिर्फ 2 कदम दूर है ना। कल के राउंड ऑफ 16 की अगर बात करें तो बहुत ही जबरदस्त मैच रहा है एंड कतर में वो एनर्जी फील हुई बिकॉज इट वॉज मोरक्को वर्सेस कैनेडा एंड मोरक्को ने कैनेडा को 3-0 से हरा कर डेफिनेटली हिस्ट्री रच दी है। वेल अजदीन उनाही ने 2 गोल्स के साथ शो चुरा लिया है एंड मोरक्को अब लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गया है। क्या बात है, मतलब यार इस पर तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए फॉर श्योर। वेल दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हरा दिया है और एक बार फिर एम्बापे ने प्रेशर में गोल करके लेस लियोस को आगे पहुंचा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में होने वाला है एक ब्लॉकबस्टर जो कह सकते हैं हम एक डेजावू सा भी है, फ्रांस वर्सेस मोरक्को एंड दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अब आप बात करते हैं आगे होने वाली मैचेस के बारे में। आज 2 और हैवी वेट क्लैशेस है, ब्राजील वर्सेस नॉर्वे जहां ब्राजील अपनी टाइटल रेस को जिंदा रखना चाहेगा और उसके बाद मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड एट द आइकॉनिक एस्टाडियो एस्टेका। ठीक है, होम क्राउड का सपोर्ट मेक्सिको के साथ होने वाला है लेकिन इंग्लैंड के पास एक्सपीरियंस और कंपोजर का एडवांटेज है। अब लेट्स सी यहां पर कौन जीतता है। आपको क्या लगता है आज के जो मैचेस है, एक तरफ ब्राजील वर्सेस नॉर्वे है, दूसरी तरफ मेक्सिको वर्सेज इंग्लैंड है, होम आर यू सपोर्टिंग? 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर, आई वॉन्ट टू नो। और फिर कल देखेंगे भाई आपके जो गेसेस थे सही थे या नहीं। मीनवाइल आफरीन है आपके साथ राइट मिर्ची मॉर्निंग्स माइक से दिल तक। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से।
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा? वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: एड्रेस दे अपना, कर देना, तो कॉरियर कर दूंगा।
3: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज की
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
1: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
2: दोनों मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: देखिए भाई, चैलेंज तो है फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपके लिए. चैलेंज ऐसा कि अब बच्चों को एंटरटेन कैसे करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेकेशंस के लिए अगर नहीं जा रहे हैं, या फिर कुछ दिन के बाद जा रहे हैं, या फिर वेकेशन से जल्दी लौटने वाले हैं. तो फिर भाई बता दूं, एक ऐसी जगह जो आपको पता तो है लेकिन शायद आप भूल गए होंगे. बस मैं बात कर रही हूँ हमद पोर्ट विजिटर सेंटर की, जहाँ कतर का फर्स्ट ओशनिक एक्वेरियम है. यहाँ 17 जायंट टैंक्स में लगभग 4700 मरीन क्रीचर्स है और 80 डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलते हैं. रेज, शार्क्स, कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस, सब एकदम ना क्लोज अप एक्सपीरियंस कह सकते हैं हम. अच्छा, ये सिर्फ एक्वेरियम ही नहीं है, यहाँ 4D सिनेमा, मरीटाइम म्यूजियम, वर्चुअल पोर्ट सिमुलेटर्स और किड्स के लिए ना डेडिकेटेड एक प्ले एरिया भी है. देखिए, ये सिर्फ फिश देखने की जगह नहीं है, ये एक्चुअली कतर की ब्लू इकोनॉमी को समझने का एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है. आज दुनिया की कंट्रीज अपनी ओशंस और पोर्ट्स को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बना रहे हैं और कतर भी उसी विजन पर बिल्कुल काम कर रहा है. तो जहां आप यहां जाते हैं, यू नॉट जस्ट वॉचिंग मरीन लाइफ, यू आर विटनेसिंग हाउ अ मरीन टाइम नेशन बिल्ड्स इट्स फ्यूचर. तो देखिए भाई, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए वीकेंड का प्लान चाहिए या फिर वीकडे का ही क्यों ना हो, देन दिस इज द प्लेस, दैट इज हमद पोर्ट विजिटर सेंटर. मैं हूं आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: अर्जुन आएंगे?
1: अरे करण, अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: आएंगे दीदी।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है और ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर अभी आपने सुना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ये मूवी से। और हो चला है वक्त के आप और मैं वो गेम की तरफ बढ़ जाएं जो इस वक्त पर हम हर रोज कहते हैं खेलते हैं और कहते तो आप हैं इसके जवाब और इसका नाम है लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सो फटाफट से रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाय ध्यान से ये सीन सुनो सीन सुना रही हो और आपने गेस करना है कि बॉस ये सीन है कौन सी मूवी से। ठीक है तो हियर इट गोज
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट
2: कैसे पहुंच गए पीछा कर रहे हो मेरा।
3: नहीं बहन जी हम तो
2: क्या हम कहा था ना मैंने नहीं चाहिए पैसे।
4: तुम उसे जानती हो
2: मेरे बस में था पीछा करते करते घर तक पहुंच गया है बदमाश।
3: बहन जी हम बदमाश नहीं है और ना ही हम किसी का पीछा कर रहे हैं बचक बली की कसम। अरे हम तो प्रतापगढ़ से आए जयराम जी से मिलने के लिए।
4: कौन हो तुम?
3: हम पवन चतुर्वेदी।
1: ऑलराइट बहुत सारा डिटेल इस इतने से डायलॉग में आ गया है कहाँ से आए हैं क्या नाम है और ये सारी चीजें तो बताइए फिर कौन सी मूवी की बात हो रही है यहाँ पर 5000 1896 एंड आई एम गेटिंग सम मैसेजेस। सिंगम नहीं है बॉस इट्स नॉट एट ऑल सिंगम। कौन सा है यहाँ पे वॉइस मैसेज भी सुन लेती हूँ मैं व्हाट्सएप पर आए हैं। मीनवाइल आप अगले गाने की तरफ आगे बढ़िएगा अखिल ध्वनि भानुशाली की आवाज में राइट ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
3: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो फिजीक है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस.
5: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट.
6: Qatar ka number one radio station.
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी सुपर 30, ऋतिक रोशन की ये मूवी. एंड आई डोंट थिंक सो आई एम गोना एवर गेट टायर्ड ऑफ दिस सॉन्ग. देयर इज सम ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ दिस सॉन्ग, है ना. Very good morning, Qatar. Welcome back. Simply Afreen का साथ है, right here on Mirchi Mornings. और यहाँ पर तो इतने सारे सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, इतने सारे भर भर के आंसर्स आए हैं कि यार ऐसा लग रहा है कि this weekend you are so fresh and you are on to everything. मतलब आपको बस कोई भी चैलेंज दे दे ये हफ्ते में, you are going to nail it just like you nailed the answer right now. In this contest here. So well, कौन सी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, डायलॉग सुनाती हूँ मैं, फिर इसके बारे में बातें करेंगे और आपके आंसर्स भी यहाँ पर सुनाऊंगी कुछ ही देर में.
1: लाइट कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: घर तक पहुँच गए, पीछा कर रहे हो मेरा.
3: नहीं बहन जी, हम तो हम
2: क्या हम कहा था ना मैंने नहीं चाहिए पैसे.
4: तुम उसे जानती हो,
2: मेरे बस में था, पीछा करते करते घर तक पहुँच गया है बदमाश.
3: बहन जी हम बदमाश नहीं है और ना ही हम किसी का पीछा कर रहे हैं. बचर बली की कसम, अरे हम तो प्रतापगढ़ से आए जयराम जी से मिलने के लिए.
4: कौन हो तुम?
3: हम पवन चतुर्वेदी, नीले पाठक वाले चतुर्वेदी साहब के बेटे.
0: चतुर्वेदी, कहा था ना मैंने बहुत सारी डिटेल्स इसमें आ गई थी. नाम भी बता दिया, क्यों आए हैं बता दिया, कहाँ से आए हैं बता दिया. एंड आई थिंक सो इसमें मूवी का नाम भी कहीं ना कहीं पर है. सो वेल, कौन सी मूवी है ये, लेट्स हियर इट आपसे.
5: गुड मॉर्निंग एफरिन जी. बीबू,
0: गुड मॉर्निंग. हाँ जी, बहुत दिन बाद.
5: मूवी का नाम है बजरंगी भाईजान, पवन चतुर्वेदी अपने सलमान खान जी और करीना कपूर जी.
0: बिल्कुल सही.
5: मूवी का नाम है बजरंगी भाईजान.
0: परफेक्ट.
6: वालेकुम
0: अस्सलाम.
6: आरिफ खान है.
0: हाँ जी.
6: फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान.
0: दैट इज राइट.
6: करीना कपूर, महेश जोशी.
7: गुड मॉर्निंग एफरिन, दिस इज मोहम्मद अख्तर. The name of the movie is Bajrangi Bhaijaan and written by the father of great director S.S. Rajamouli.
0: Okay.
7: And the protagonist are Salman Khan, Kareena Kapoor and Nawazuddin Siddiqui. Thank you.
0: Okay.
8: Good morning, Afreen.
0: Good morning.
8: This movie ka dialogue hai Bajrangi Bhaijaan, Salman Khan aur Kareena Kapoor Khan.
0: All right.
8: Bajrangi Bhaijaan.
0: That is right. और सिमिलरली आज तो इतने सारे लोगों के मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, जितने हो सकते हैं यहाँ पर मैं उनके नाम बताने की कोशिश करूँगी. जैसे मोहम्मद यूसुफ खान जो है, इनका यहाँ पर मैसेज आया है. एंड देन वी ऑल्सो हैव योर उषा का मैसेज, हुजैब का मैसेज, अब्दुल रजाक का मैसेज, आरिफ का मैसेज, बिबू का मैसेज, शारिक, सद्दाम, वसीम, विनोद, सईद हैम, अफजल, सो मेनी मोर, मोहम्मद खान, रिजाल हसैन, एंड द लिस्ट इज एंडलेस. सो वेल, चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से.
9: आशियाना मेरा,
0: बजरंगी भाईजान का ये खूबसूरत सा गाना. राइट चीज़ ऑन मिर्ची, माइक से दिल तक आफरीन के साथ. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

वेल, ये तो मैंने अभी रियलाइज किया कि ये जो गाना है ये ऋतिक रोशन के ऊपर फिल्माया गया है, धूम का गाना है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये सुखबीर ने गाया है, ये वही सुखबीर है जिन्होंने वो गाया था ओ हो, तो ये भी तो गाना उनका है भाई, ये क्यों नहीं गाता है वो हर जगह। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आपको भी अभी थोड़ा सा फोमो होने लगा है क्या? मतलब देखिए, सब लोग अब वेकेशंस के लिए कहीं ना कहीं जा रहे हैं, आप कतर में ही हैं और सोच रहे हैं कि नहीं भाई थोड़ा सा इधर उधर छोटा सा चक्कर लगा लेते हैं। तो काफ़ी लोग हैं कतर में अभी जो रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं आप शायद कर भी सकते हैं, एयर फेयर बच जाता है देखो, और अपनी कार का कंफर्ट भी मिल जाता है, मज़े में आप चले जाते हो। लेकिन यर्स द स्मार्ट ट्रैवलर चेकलिस्ट, अगर आप प्लान कर रहे हो रोड ट्रिप कहीं जाने का, या फिर अभी मेरी बात सुनकर करने वाले हो, तो फिर देखिए सिर्फ बैग्स पैक करना इज नॉट इनफ। सबसे पहले तो मेट्राश ऐप या MOI पोर्टल पर चेक कर लीजिए कि कोई आउटस्टैंडिंग ट्रैफिक फाइन तो नहीं है ना, क्योंकि अनपेड फाइन्स के साथ आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप GCC के बाहर ड्राइव कर रहे हैं तो व्हीकल का एग्जिट परमिट भी जरूरी हो सकता है। अगर सिर्फ GCC कंट्रीज जा रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया चले गए, चलिए UAE चले गए, बहरीन, कुवैत या ओमान, तो जनरली एग्जिट परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फाइन्स जो है ये क्लियर होने चाहिए और व्हीकल ओनर्स या ऑथराइज ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा हो। देखिए रोड ट्रिप का मतलब इट्स नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन ना, रोड ट्रिप का मजा ही तो ये रहता है, दी एंटायर जर्नी बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द वेकेशन। अब कतर से आप ड्राइव करके सऊदी अरेबिया का अल अहसा ओएसिस, यहाँ पर एक जा सकते हैं, रियाद जा सकते हैं अगर लंबी एडवेंचर रोड ट्रिप पसंद है आपको, तो फिर आप UAE के अबू धाबी और दुबई तक भी जा सकते हैं, और नेचर लवर्स के लिए तो ओमान, मस्कट और जबल अकदर, ये तो बिल्कुल बकेट लिस्ट में आपके होना ही चाहिए। सो वेल, एनीवन लिसनिंग टू मी, आर यू प्लानिंग सम रोड ट्रिप, लेट मी नो 5001896 व्हाट्सएप पर कि यार कहाँ जाना आपको पसंद है, आप पहले रोड ट्रिप पर जा चुके हो या फिर जाने का प्लान कर रहे हो। मीनवाइल माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wirt bala burka. Milci burka.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गम पा। हमारे ये रियलिटी शो है। मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊंचाई जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊंचाइए ऊंचाइए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: माय गॉड, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: it's hot.
5: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
6: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
9: हिट गाने
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

लेकिन देयर वाज सम मैजिक ऑफ अमित त्रिवेदी, अब उनकी आवाज में या उनके गानों में, विच ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आई थिंक सो कहीं ना कहीं वैनिश हो गया. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए भाई, नया हफ्ते के साथ साथ नए महीने में हम एंटर तो कर चुके हैं और नए महीने का एक एक्साइटमेंट रहता है, सैलरी हाथ में आती है. बट दिस टाइम आई थिंक सो द एक्साइटमेंट इज कि बहुत से लोग वेकेशंस पर जा रहे हैं और ये जो सैलरी है वो यहाँ नहीं, आपके होम टाउन में इस्तेमाल होने वाली है. तो भाई देरी किस बात की, एक्सचेंज रेट सुन लीजिए फिर. देखिए आज का एक्सचेंज रेट आईपे का ये कह रहा है, कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.12, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.57. बांग्लादेशी टाका की बात करें तो इट इज एट 33.97 एंड श्रीलंकन रुपीज आपको मिल रहे हैं 91.84. अगर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट नेपाली रुपीज की बात करें तो नेपाली रुपीज एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं 41.71. ये थी आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां एंड खुशियों का वन एंड ओनली फॉर्मूला 89.6 मिर्ची 1 पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ. इट्स हॉट.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Well, Tesher और Justin Derulo की आवाज में ये गाना आपने सुना, राइट ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ सिंपली आफरीन। लेकिन यार वक्त तो देख ले, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है एग्जैक्टली सुबह के 8:41 पर।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेलकम बैक जी। देखिए भाई, टाइम तो हमने आपको बता दिया, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। वो लोग जो हर रोज हमें ये वक्त पर एग्जैक्टली ट्यून इन करके सुनते हैं कि भाई अब तो फिलहाल कुछ और भी सुनने का यहाँ पर और खेलने का वक्त हो गया है। यस, पहचान कौन, ये है मेरे गेम का नाम, ये मैंने डिसाइड कर लिया। हाँ भाई, यहाँ पर मैं इंटरव्यूज या कुछ बाइट्स कुछ सेलिब्रिटीज के सुनाऊंगी। लाइक हर रोज मैं अलग अलग सेलिब्रिटी के सुनाती हूँ, आज किसी एक सेलिब्रिटी की सुनाने वाली हूँ और आपने गेस करना है कि खैर आफरीन कौन सी सेलिब्रिटी की आवाज़ सुना रही है। सो हियर इट गोज़, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से पहचानो इस आवाज को।
2: घर तक पहुंच गए, पीछा कर रहे हो मेरा।
0: ये वाला नहीं, ये वाला।
3: माय फर्स्ट डेट वाज व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड, इट वाज एट मैकडॉनल्ड्स व्हेन इट जस्ट ओपन्ड इन लोखंडवाला, एंड आई वेंट विद माय ब्रदर अर्जुन टू द डेट एंड आई गॉट अ ह्यूज टेडी बेयर for my date and I gave it to Arjun because I was too scared to take it at home, so he has walked into his house with a big teddy bear.
0: All right, किसकी आवाज है ये? यहाँ पर इसने अपने भाई का भी नाम लिया है, तो हिंट्स तो काफी सारे ड्रॉप किए हैं इसने। तो बताइए 5000186 पर दैट ये कौन सी सेलिब्रिटी की आवाज है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जाहिर सी बात है। और यहाँ पर कुछ लोग का मैसेज ये भी आया है कि ये जानवी कपूर है। नहीं माय फ्रेंड, ये जानवी कपूर नहीं है। अब दिमाग लगाओ ये कौन है। अब इसने भाई का नाम लिया है तो जरूरी थोड़ी है ना कि ये रियल ब्रदर की बात कर रही है। भाई ये कजन भी तो हो सकता है। सोचो किसकी बात हो रही है। मीनवाइल टेशर इज बैक अगेन विद येट अनदर जबरदस्त गाना एंड दैट टू अलोंगसाइड राघव।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है? ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन में। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, अमित त्रिवेदी की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। एंड आई लव दिस मूवी। मतलब देवडी मूवी में स्टोरी से ज्यादा मेरे ख्याल से गाने एक नंबर थे बॉस। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्रीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, यहाँ पर कंफ्यूज जब मैं आपको करती हूँ ना, तब मुझे बड़ा मजा आता है रियली। मतलब इतनी सारे मैंने यहाँ पर आपको हिंट्स भी दिए, लेकिन चलो कोई ना, गलत आंसर्स में भी बहुत मजा आता है। सो किस चीज के बारे में बात कर रही है आफ्रीन, ये तो बता दो। पहले तो यहाँ डायलॉग मैंने आपको सभी को सुनाया था, और ये डायलॉग कौन सा डायलॉग नहीं था, इंटरव्यू था किसी सेलिब्रिटी का, तो बस उनकी आवाज आपने पहचानी थी। सो लेट्स हियर इट आउट।
2: माय फर्स्ट डेट वाज व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड। इट वाज एट मैकडॉनल्ड्स व्हेन इट जस्ट ओपन्ड इन लोखंडवाला, एंड आई वेंट with my brother Arjun to the date, and I got a huge teddy bear for my date, and I gave it to Arjun because I was too scared to take it at home, so he has walked into his house with a big teddy bear.
1: All right, बहुत सारे answers आए हैं। पहले जब अर्जुन का नाम लिया तो लोगों को लगा कि कहीं ये जानवी तो नहीं है, अपने भाई के बारे में बातें कर रही है। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर hint दे दिया था, देखो जरूरी नहीं है कि ये रियल ब्रदर हो सकता है या कोई कुछ, मेरी तो कजन भी तो हो सकता है। सो इसी वजह से फिर यहाँ पर मैसेजेस आए सबके, जैसे जॉनसन का भी मैसेज आया है, रोहित का मैसेज आया है, मोहम्मद असफ खान का मैसेज आया है, और विवेक का मैसेज आया है, और ये कौन है, शुभम का मैसेज आया है, ये कहते हुए कि आफरीन ये जो आवाज़ है ये तो सोनम कपूर की आवाज़ है। और बिल्कुल सही जवाब। और जहाँ सोनम कपूर की बात होती है ना, सोनम कपूर ने मेरे ख्याल से सबैटिकल लिया है या ब्रेक या फिर छोड़ दिया इंडस्ट्री, आई हैव नो आइडिया। लेकिन एक वक्त पर सोनम कपूर बहुत पॉपुलर रही है, स्पेशली उनके फैशन सेंस के लिए। और कुछ चंद मूवीज में से एक मूवी से मैं ये गाना सुनाना चाहूंगी, जो मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुई थी, फवाद खान के साथ ये मूवी आई थी, उनकी नाम था खूबसूरत। बट दिस सॉन्ग आई थिंक सो इज क्वाइट अंडररेटेड। सोना मोहपात्रा की आवाज इतनी वार्म फीलिंग देता है, और साथ में अरमान मलिक के आवाज।
3: नैना नो पता
1: है। Enjoy this lovely track, माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ, इट्स हॉट।

0: अंजलि, बच गई हेल्पलाइन, बोल।
1: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
0: ताए, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: संजू, व्हाट अ सॉन्ग यार, कुछ तो जादू है भाई। आई थिंक सो तुम्हारी आवाज में है या फिर तुम्हारी म्यूजिक कंपोजिशन में है, मजा आता है। बस गाना थोड़े टाइम के बाद शायद फेड आउट होता होगा, लेकिन जब भी फेड आउट होने लगता है ना आपके कोई गाना, तो आप एक दूसरा गाना लेकर आते हो एंड इट इज इक्वली एंटरटेनिंग। विद दिस मैं हूँ आप श्रीनाथ के साथ, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:03 की तरफ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और आफरीन का इशारा हो रहा है फुटबॉल के स्कोर की तरफ। And my friends, all the football fans out there, World Cup ना अब ऐसे स्टेज पर आ चुका है कि बस जीत जो है, ट्रॉफी जो है, एग्जैक्टली मैं कह सकती हूँ दो कदम दूर है। एक्चुअली क्वाइट लिटरली अगर कल की राउंड ऑफ 16 की बात करें तो भाई मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हरा कर जी हिस्ट्री रच दी है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मैं साल 2022 में ले जाना चाहूंगी आपको, जब हमारे यहाँ पर फुटबॉल हो रहा था ना वर्ल्ड कप, तब मोरक्को सडनली मतलब एक डार्क हॉर्स की तरह ऐसे दौड़ते दौड़ते जीतते जीतते ये आगे गया है। एंड आई रियली रिमेम्बर नाइसली कि जब भी मोरक्को जीतती थी ना, हम फटाफट से सूक वाकिफ की तरफ जाते थे फॉर सेलिब्रेशन, और क्या माहौल होता था भाई साहब। एंड एट वन स्टेज आई थिंक सो जब क्वार्टर फाइनल्स तक आ गया था मोरक्को ना, तब पूरा कतर बहुत सारे लोग ना, जैसे इजिप्शियंस भी थे और बहुत सारे लोग वर एक्चुअली सपोर्टिंग मोरक्को, है ना। अभी भी ऐसे ही कुछ रहा कतर में, कल लोगों ने मैच देखी एंड एवरीवन वर रूटिंग फॉर मोरक्को एंड आई रियली होप यार ये और भी आगे जाए। सो आगे बात करते हैं, फ्रांस और पैराग्वे की बात करते हैं यहाँ पर, जहाँ फ्रांस ने 1-0 से हरा दिया है और एक बार फिर एम्बापे ने प्रेशर में गोल करके लेस ब्लूज को आगे पहुंचाया है। सो अब क्वार्टर फाइनल में होगा एक ब्लॉकबस्टर, फ्रांस वर्सेस मोरक्को, और कहीं ना कहीं मुझे ये पूरा सिनेरियो ना डेजा वो दे रहा है 2022। क्या आपको याद है किस मोमेंट की बात कर रही हूँ मैं? अगर है तो भाई बताओ मुझे व्हाट्सएप करके 5000196। अच्छा ये तो हो गई बात आफरीन ने की है पिछली मैचेस की, अब आगे वाली बात की बात करते हैं। हैवी वेट क्लैशेस जो आने वाले हैं, ब्राजील वर्सेस नॉर्वे है, जहां ब्राजील अपनी टाइटल रेस को जिंदा रखना चाहेगा, और उसके बाद मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड भी तो है। तो बस ये जो है मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड पर कर रहा है, मेक्सिको का सपोर्ट कितना होगा बस वो सोच लीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि इंग्लैंड के पास एक्सपीरियंस और कंपोजर का एडवांटेज है। अब देखते हैं नॉकआउट फुटबॉल का असली थ्रिल यही तो है बस। सो वेल फुटबॉल का जोश तो यहाँ पर बरकरार रहेगा कुछ और दिन, पर हमारे गानों का जो नशा है ये तो बरकरार रहना चाहिए कि नहीं। कॉकटेल टू का ये अगला गाना महमूद राघव चैतन्य और रुआ के की आवाज में, माइक सिग्नल तक आप श्रीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं।

0: राम नाम राकेश है ना, मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार। मेरे
1: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बात बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है?
0: तू एक
1: तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, एक केक तो खा ले।
0: हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
0: मैं समीर बोल रहा हूँ।
1: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोलो कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

देखो बचपन में टॉयज यानी इमेजिनरी टॉयज से तो हमने इतने खेले हैं, ये ब्रांड्स एंड्स क्या होता है ये तो हमें पता भी नहीं था। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बचपन में अगर टॉयज के ब्रांड्स के हमें नाम भी पूछे जाए ना, तो मुझे दो टॉयज के ब्रांड्स पता थे, दैट वाज बारबी फॉर द गर्ल्स और लड़कों के लिए आई थिंक सो हॉट व्हील्स का बहुत क्रेज था। इसके अलावा डिडंट इवन नो कि यार टॉयज में भी ब्रांड शैंड कुछ होता है। एंड लुक एट टुडे, फास्ट फॉरवर्ड टू दिस डे जहां पर कतर में फोर्थ एडिशन आ गया है बस, अब कतर्स बिगेस्ट टॉय फेस्टिवल। अब ये जो है ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रहने वाला है DECC में, यानी दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर दिस ईयर्स फेस्टिवल इज द बिगेस्ट येट, कवरिंग मोर देन 22,000 स्क्वायर मीटर ऑफ इंडोर एंटरटेनमेंट। अब दिस जो टॉय फेस्टिवल का जो धमाका है ना, ये सिर्फ DECC तक सीमित नहीं है, इनफैक्ट अक्रॉस द मॉल्स इन कतर हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिवेशन चल रहे हैं। लेकिन असली जो मजा है ना, दैट इज हैपनिंग एट DECC, क्योंकि यहां पर ना एक महीने का गजब के फैमिली फन इवेंट्स है। 50 ग्लोबल ब्रांड्स, लाइक आई वाज सेइंग कि हमें सिर्फ दो पता थे और अब तो भाई न जाने ये बच्चों को कितने सारे टॉयज के ब्रांड्स पता है। एंड दे आर सो क्लियर, एक क्लैरिटी है कि भाई हमें यही ब्रांड का यही वाला टॉय चाहिए, यही वाला कैरेक्टर चाहिए। ओ माई गॉड, ये सब कुछ अगर आपके भाई बच्चे मांगते हैं ना, तो फिर सीधा उठाइए और ले जाइए टॉय फेस्टिवल में, वहां पर जाकर इधर उनको छोड़ दीजिए और उनके पूरे दिलों की अरमान वहां पर पूरी हो जाएगी। देखिए लाइव स्टेज शोज तो है ही वहां पर, कैरेक्टर मीट एंड ग्रीट्स भी है, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस है, इनफैक्ट देयर इज आल्सो शॉपिंग कॉम्पिटिशंस भी है, थीम जोन्स फॉर ऑल एजेस। डिड यू हियर दैट, आई एम टेलिंग फॉर ऑल एजेस, मतलब कुछ ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी है वहां पर, आपके अंदर का बच्चा जो है वो जिंदा हो जाएगा वहां पर। वेल अगर एंट्री टिकट्स की बात करें तो 50 कतरी रियाल है वीकडे पर, वीकेंड पर 70 कतरी रियाल है, लेकिन डोंट वरी फैमिली ऑप्शंस है ना, फैमिली पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, VIP ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो ये सारी चीजें सॉलिड माहौल बना हुआ है DECC में, तुरंत पहुंच जाइए बच्चों के साथ वहां पर। मीनवाइल मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: सिंह कैसे अब हम मूवीज के लिए जाएंगे ये जानते हुए कि अब से कोई बॉलीवुड की मूवीज में अरिजीत की आवाज में तो गाना होगा ही नहीं। मतलब इतने खूबसूरत गाने आपने जो दिए हैं भाई, हमारी आदतें बिगाड़ दी हो। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और भाई समझदार को इशारा काफ़ी है, और इस वक्त पर आफरीन ऐसा कुछ लेकर आती है जो बिल्कुल कहते हैं ना लिटरली माइक से दिल तक होता है। कुछ चंद अल्फाज जो मुझे बहुत पसंद आए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुझे सुनने वाले लोग इससे रेजोनेट करते हैं। सो आज आफरीन की डायरी से एक शायरी नहीं है, बस दो लाइंस है जो आज की हकीकत बयां करती है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो गुलजार साहब कहते हैं, मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सकता। यार दैट्स द रियल लाइक रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। और अक्सर हम सुनते हैं ना कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, दैट्स सो ट्रू। जो नहीं है हमारे पास उसका गम ना करते हुए जो है उसका शुक्र करना भी कितना ज्यादा जरूरी है ना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। अरिजीत सिंह की बातें कर ही रही थी ना मैं, जी नहीं भरा मेरा, और एक गाना सुना देती हूँ आपको। सैयारा का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट। I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
4: Relative se advice lo to kehte hain.
6: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: यार यहाँ से तो यादें ताजा कर दी एंड आई कांट बिलीव इट्स ऑलरेडी बीन वन ईयर। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और माय रेफरेंस इज टू अदनान सामी। हाय, 4th of July एग्जैक्टली 2025 में अदनान सामी ने हमारे कतर में पहली बार परफॉर्म किया था और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी भाई। एंड पहले तो मैं ऑलरेडी 90s से लेकर अब तक के ना अदनान सामी की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ, बिकॉज उनकी जो कॉम्पोजिशन ना बहुत ही यूनिक थी और उस वक्त से लेकर अब तक भी ना बहुत रेलिवेंट रही है। कि अगर आप तेरा चेहरा गाना अभी सुन ले या फिर लिफ्ट करा दे क्यों ना सुन ले, यू स्टिल फील दीज सॉन्ग्स आर लाइक मेड अभी 2-3 महीना पहले। सो जो रेलिवेंसी होती है ना कुछ गानों की, जो सालों साल बरकरार रहती है, उस कैटेगरी में ना अदनान सामी के गाने आते हैं। एंड कुछ मूवीज में भी इन्होंने जो गाने दिए थे ना, दोज हैव बिकम लाइक गोल्ड, गोल्ड बन गए हैं मतलब। और अब अदनान सामी को यहाँ पर लाइव जब हमने सुना था 1 साल पहले, क्या समा बांधा था उन्होंने यार, मतलब बहुत ही मजा ही आ गया था। एस्पायर हॉल में हुआ था ये, यस राइट, एस्पायर हॉल में हुआ था। एंड देन मिर्ची है ना, मिर्ची कुछ ना कुछ करते रहता है, लेकर आते रहता है। एंड ये साल भी थोड़ी हम फीका फीका जाने देंगे, कुछ अलग अंदाज में कुछ नया करेंगे। और क्या करेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, सारे पत्ते अभी नहीं खुलती आफरीन, धीरे धीरे धीरे धीरे। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, मिर्ची वन कतर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहो, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि भाई कब क्या पत्ता ही नहीं चला कैसे। सो यू डोंट हैव टू मिस आउट ऑन एनी बिग न्यूज, इसलिए मिर्ची वन कतर फॉलो करो। मीन वाइल अदनान सामी की इतनी मैंने बातें कर ली है ना, और मेरा जी जी बिल्कुल भी भरा नहीं है। सो हाय, बातें हमारी कल भी कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए गाने आपके लिए खास मेरी तरफ से, माइक से दिल तक आफरीन की तरफ से, और मिर्ची इट्स हॉट। टाटा बाय बाय, सायोनारा।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ।
2: रख, रख।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची 1 कतर।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

कुमार सानू की खूबसूरत सी आवाज़ और बड़ा लवली ट्रैक है ये प्यारा सा गाना, ये खूबसूरत सा गाना। चलिए ये तो हमने सुन लिया नए हफ्ते की शुरुआत करते हुए, लेकिन एक काम करें, कुछ खास काम भी तो कर लें। हे वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। लेकिन देखिए इस वक्त सबसे एक खास बात आप तक मैं ये पहुंचाना चाहूंगी कि जहां पे एक तरफ हम नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं कुछ तो नया है जो आज एक बार फिर से शुरू हो सकता है। देखिए सबसे खास बात यह है कि लाइफ जो है ना, आपको हर दिन जिंदगी में एक नया मौका देती है कि आप लाइफ को नए तरह से जी सकें, नए तरह से किसी चीज़ की शुरुआत कर सकें। यार किसी ने ना बहुत खूब कहा है कि इंसान मरता तो बस एक दफ़ा है, लेकिन जीने का मौका आपको हर दिन हर पल और हर वक्त मिलता है। तो बस क्यों ना हर दिन को कुछ इस तरह से बताएं कि नया सीखें, कुछ नया करने की कोशिश करें, किसी के चेहरे में स्माइल लेकर आएँ। एंड हाँ, इसी के साथ लाइफ के जितने भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, उन एविडेंसेस को और कलेक्ट करते रहें। एंड कभी लाइफ का कोई लो मोमेंट आए तो इन्हीं बातों को हम याद दिलाएं कि भैया एक दौर था, एक वक्त था जब हमने इतनी हिम्मत रखी थी, जब हमने इतना अच्छा काम किया था। और इसी के साथ हर एक वक्त को हम आगे खूबसूरती से निकालते जाएं, बिताते जाएं, जीते जाएं। चलिए इस वक्त अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो फटाफट से मुझे एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दें 5001896। लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल एमी वर्क एंड शायद माला की आवाज़ में आपको अगला गाना सुनाते हैं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vidva la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है, हैं?
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे
2: कमाते?
3: तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से।
2: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
2: जरा वापस दे दो यार
3: पैन कार्ड।

0: क्या होगा वो कौन देखेगा आके
1: हैं?
0: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: एड्रेस दे अपना, वो कर देना, कॉरियर कर दूंगा।
0: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करो बताओ?
0: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
0: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ू कु।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पकड़ा।
3: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
4: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कम है के?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
2: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: लेकिन इस बेहद एक्साइटिंग एक्सपीरियंस की बात भी हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी और मेरी जिंदगी में मिठास है, साथ स्पाइस का तड़का है, लेकिन ये काम हम सब के लिए अगर सबसे ज्यादा खुश कर रहा है तो वो है ongoing World Cup and I'm talking about FIFA World Cup 2026. यार अगर आप भी मेरे जैसे फुटबॉल फैन जो है बन चुके हैं आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप कतर, तो ये अगली खबर जो है वो आपके लिए भाई साहब। अगर प्रेशर की बात करें तो दिन ब दिन वो जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही कुछ और भी आ रहा है तो वो है ढेर सारा एक्साइटमेंट। इस वक्त पैराग्वे ने फ्रांस को बिल्कुल भी इजी गेम नहीं दिया। अगर आप कल के मैच की बात करें, बहुत सारे हार्ड टैकल्स थे, टाइट डिफेंडिंग थी, कांस्टेंट प्रेशर था, लेकिन कहते हैं ना कि चैंपियंस वही होते हैं जो सिर्फ अच्छे गेम के अलावा अगर कुछ बुरा भी चल रहा हो ना तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से समेटना 101% जानते हैं। एंड ऐसे में अगर कोई एक नाम हमारे आगे आता है तो वो है या सबका बाप यानी कि एम्बाप्पे। 70th मिनट वो एक पेनाल्टी, वो एक गोल, एक मौका, इस बंदे ने जिस तरह से उसे स्कोर किया है ना, सिक्योर किया है ना, उसके बाद फ्रांस की 1-0 की जीत के बाद फिर से अगर इस वक्त फ्रांस कहीं पहुंच चुका है तो वो है क्वार्टर फाइनल्स। क्या बात है यार, मैं सच कह रही हूँ, मतलब एम्बाप्पे के पूरे परफॉर्मेंस को आप देखने की कोशिश करेंगे ना तो ये एक बंदा ऐसा है जो किसी भी तरह से सिर्फ गोल्स नहीं कर रहा है, ये पूरी तरह से हिस्ट्री लिख रहा है यार। मतलब हर वर्ल्ड कप के साथ उनकी लेगेसी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में उनका नाम तो ऑलरेडी शामिल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेजेंड्स की लिस्ट में ना ये बंदा एक अलग मुकाम हासिल करने वाला है। लेकिन अब ब्लॉकबस्टर जैसे बॉलीवुड फिल्म में कहते हैं वो आपको मैदान में देखने को मिलेगा खेल के। क्वार्टर फाइनल्स में अगर किसी का आमना सामना होने वाला है तो वो है मोरक्को एंड फ्रांस का। एंड मोरक्को जिसने 2022 वर्ल्ड कप में दुनिया को सरप्राइज कर दिया था एंड फ्रांस के साथ एक अनफॉरगेटेबल राइवलरी भी क्रिएट की थी, एक बार फिर से अब उनका आमना सामना होने वाला है। देखना अब यह है कि सेमीफाइनल की टिकट जो है भाई साहब ये किसकी है। तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को इस वक्त फॉलो कर रहे हैं तो आपके हिसाब से वो कौन सी टीम है यार जो फाइनल्स में अपनी जगह 101% बनाने वाली है, टॉप टू टीम्स अकॉर्डिंग टू यू। फटाफट से मैसेज भेजो 5000 1896। आपको पता है मेरी एनर्जी जो है ना वो डेफिनेटली दुगनी होती है व्हेन आई गेट टू हियर फ्रॉम यू, सो आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल चलिए आज ना नए गानों की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। आईपी सिंह एंड जोनिता गांधी की आवाज में एक पावर पैक गाना, लेट्स गो हबीबी।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, Fahim Abdullah ki ye khubsurat si awaaz and what a lovely track it is. The title track of film Sayyara featuring Aneet Padda and Ahaan Pandey. Chaliye, ab ek aur baat jo hai, aapko inse judi hui bata di jaye.
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, Aneet Padda and Ahaan Pandey ke hum baat karein. Jaise hi ye duo on screen aaya, ek alag hi magical experience create hua. Matlab, agar aap Sayyara film ko dekhne ki koshish karenge, mujhe lagta hai ki sahi marketing se ek film ko kaise hit banaya ja sakta hai na bhai. Ye inki puri ki puri team ne baat ko bahut achhi tarah se samajh li thi. Ye mana ki actors ki acting jo hai wo kamaal hai. Storyline jo hai wo bhi lajawab hai. Film jo hai kaafi achhi hai, lekin Sayyara ki line pe bahut sari फिल्में पहले भी बनाई गई, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को इन्होंने प्रमोट किया, प्रोजेक्ट किया, भाई आप कोई तो सोशल मीडिया हैंडल या पेज खोलते जहां पे इस फिल्म से जुड़ी हुई आपको कहानी या स्टोरी लगातार दो हफ्ते तक नजर ना आई. Now this is where the power of right marketing lies. अपने काम को किस तरह से सही तरह से बेचना है. जिस दिन किसी भी एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बंदे को पता चल जाए ना, तो उसके बाद किसी चीज़ को हिट होने में वक्त नहीं लगता अगर आपके काम में थोड़ी भी वैल्यू है. एंड इसका लाइव एग्जांपल अगर कोई था, सो दैट वाज फिल्म सैयारा. बढ़िया जी. चलिए, चूंकि इसका गाना मैंने आपको सुनाया तो सोचा कि क्यों ना इसके पीछे जुड़ी हुई एक जरा सी कहानी भी आप तक पहुँचा दी जाए. लेकिन इसके अलावा कतर की कहानी पे इस वक्त फोकस करने की मैं कोशिश करूं, तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. बच्चे, बूढ़े और जवान, आप सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है खास मेहमान. लेकिन कहाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कतर टॉय फेस्टिवल, जो कि ऑलरेडी किक स्टार्ट हो चुका है दुआ एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पर. पूरे महीने भर इसके एक्टिवेशन चलते रहेंगे. बहुत सारी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है. अगर अब तक नहीं गए तो ज़रूर जाएं. भैया हाला समर आ चुका है कतर में, उसे हेलो बोलने का वक्त आ गया. अच्छे से अपनी छुट्टियाँ बताओ यार. नानी का घर भी हमारा कतर बना हुआ है, जब तक आप और हम ट्रैवल नहीं कर रहे तो पूरे मजे करेंगे. बेनी दयाल की आवाज, सतीश चक्रवर्ती का साथ एंड ये 90s का एक प्यारा सा गाना आप तक फिर से पहुंचाते हैं. चलिए एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: स्टीवन बेन एंड जस्लीन रॉयल की खूबसूरत सी आवाज और लवली ट्रैक है इस वक्त, ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब दूसरी काम की बात, आप मुझे सुनाने के लिए तैयार हो जाएं।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड साथ ही अब दिन का सबसे एक्साइटमेंट सेगमेंट भी आपके साथ बस मैं शुरू करने ही वाली हूँ। भाई साहब, वो सेगमेंट जिसमें इत्मीनान से कुछ देर के लिए मुझे बैठने का मौका मिलता है और मेरी आवाज के अलावा मुझे आपकी भी आवाज सुनने का बहुत अच्छा सा मौका मिलता है, क्योंकि बात इतनी है ना, स्टूडियो में बैठे बैठे जब मैं अकेले बातें करती हूँ तो मुझे ये तो पता नहीं होता कि बाहर कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता होता है कि अपनी बातों को बोलकर मैं खुद सुन रही हूँ, दिल से एंजॉय भी कर रही हूँ। लेकिन हाँ, खुशी तब होती है कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं, ये पता चल जाए जब मैं कोई सवाल पूछूं ना, आप उसका सही सही या जो भी आपको जवाब पता है मुझ तक पहुंचा दे। कैसे भैया? अब शुरू होता है बॉलीवुड वाला सरप्राइज टेस्ट, तो आपके बीच मैं पेश करने वाली हूँ एक कॉन्वर्सेशन जिसे आपको सुननी है, आइडेंटिफाई करनी है, साथ में मुझे ये बताना है कि ये कॉन्वर्सेशन हुई तो बॉलीवुड की किस आइकॉनिक मूवी में हुई। करेक्ट आंसर मिल जाए तो फटाफट से भेज दे सही आंसर एट 5000 1896 5000 1896 पर। विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची आंशु। सो फॉर नाउ हियर वी गो विथ द ऑडियो।
2: जिस तरह से तुम अपनी लाइफ हैंडल कर रही होगी तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकती हो। डू रियलाइज दैट सिर्फ हंसी खेल मजाक नहीं होती है जिंदगी की, लाइफ पे सीरियस भी होना पड़ता है।
3: तुम तो लाइफ में बहुत सीरियस थे आदित्य, क्या फायदा हुआ? बहुत बड़े प्रॉब्लम में तुम भी तो फंस गए ना। आगे क्या होने वाला है इस पर किसी का कंट्रोल तो है नहीं, तो ऐसे में मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है।
0: भाई साहब, ये कॉन्वर्सेशन किसी और की हो या ना हो, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा जरूर लगा कि मेरे पापा और मेरी हो रही है। चलिए जी, फटाफट से बताएं कि ये आवाजें आपने सुनी तो किस फिल्म में सुनी। नाउ दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवीज एंड अगर ये फिल्म आपको भी उतनी ही ज्यादा पसंद है जितनी कि मुझे है, तो भैया जवाब भेजो ना 5000 1896 एंड अगर अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर जवाब भेजोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि आवाम जनता जनार्दन तक मैं आप तक ये पहुंचा पाऊं। हाँ जी, फोन भी आने लगे, चलिए मैं फोन उठाती हूँ, आपको अगला गाना सुनाती हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: सुनिधि चौहान की खूबसूरत सी आवाज़ है। व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़, व्हाट अ प्यारा सा गाना यार। मतलब कुछ कुछ नए गाने भी जो इन दिनों अरिजीत सिंह के आ रहे हैं ना, उन गानों को सुनने के बाद लगता है कि भाई अब से कुछ महीनों के बाद शायद प्लेबैक सिंगिंग में जब अरिजीत सिंह की आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो फिल्में इनके बिना चलेंगी तो कैसे चलेंगी, यू नो सवाल ही उठता है। ये बात हमने शायद बहुत अच्छी तरह से सीखी है, सुनी है, पढ़ी है कि ना किसी के बगैर कोई काम रुकता है और ना किसी के होने से कोई काम चलता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ होता है तो वो है ज़्यादा बेहतर होना या कम बेहतर होना। और कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जो अगर मौजूद ना भी होना तो आए दिन आए वक्त जो है उनकी अच्छी बातें या उनका अच्छा काम हमेशा याद आता रहता है। तो बस अरिजीत सिंह जो है एक ऐसी मिसाल है कि जहाँ भी वे होते हैं भाई साहब वो अपनी छाप जो है ना कुछ इस तरह से छोड़ते हैं कि मूवीज़ में भी ये हो सकता है कि कल के दिन जब हम कोई गाना सुनेंगे तो लगेगा कि भैया ये गाना अगर अरिजीत ने गाया होता तो और अच्छा होता। लेकिन और भी अच्छे कलाकार हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा। और अरिजीत जो है बिल्कुल अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक के साथ तो हमारे साथ बने ही रहेंगे। वैसे इस वक्त आप जो मेरे साथ बने हुए ना, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच एक पेश की कॉन्वर्सेशन जिससे आपको आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से। एक काम करते हैं, जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं फिर से प्ले करती हूँ। अगर आपको लगे अभी भी अपने पहचान लिया है तो जल्दी से करेक्ट आंसर भेज देना। लेकिन कहाँ, 5000186 पर, 5000186 पर विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु एंड हियर वी गो।
1: जिस तरह से तुम अपनी लाइफ हैंडल कर रही होगी तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकती हो। डू रियलाइज दैट सिर्फ हंसी खेल मजाक नहीं होती है जिंदगी की, लाइफ में सीरियस भी होना पड़ता है।
2: तुम तो लाइफ में बहुत सीरियस थे आदित्य, क्या फायदा हुआ? बहुत बड़े प्रॉब्लम में तुम भी तो फंस गए ना।
0: बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो, फंसे या नहीं फंसे मुझे पता नहीं, लेकिन आप जरूर फंस जाते अगर आपने सही जवाब नहीं दिया होता। देखें लोगों का क्या कहना है।
3: Hi Anshu, good afternoon. The dialogue which you just played on radio is from Jab We Met, and the dialogue is between Shahid Kapoor and Kareena Kapoor Khan. Thank you. Have a good day.
0: हाँ जी, ये जो आखिरी में आपने खान लगाया ना ये बहुत ज़रूरी था। सैफ अली खान भी वो शाहिद के साथ होती है, थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं, तो ये रीट्रेड करना ज़रूरी होता है। लोगों का क्या कहना है और देखें।
4: Hi Anshu, this is Rohit. I think this is from the movie Jab We Met.
0: Absolutely, आप दोनों ने जो कहा ये पूरी तरह से सही है। आपके अलावा औरों ने भी जो कहा वो भी पूरी तरह से सही है। इस फिल्म को कोई ना जाने पहचाने तो फिर क्या ही जाने। वेल थैंक यू प्रिंसी, थैंक यू यूसुफ, थैंक यू राधिका, थैंक यू मोहित, थैंक यू इरफान, थैंक यू अहमद एंड टू ऑल दी वंडरफुल पीपल हु हैव रिस्पोंडेड। एब्सोल्युटली आपने जो कहा इस फिल्म का नाम है जब वी मेट। देखो यार, इसकी स्टार कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सारी बातें ना हर कोई जानता है। मतलब शाहिद कपूर, करीना कपूर, यार इम्तियाज अली, मतलब मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। लेकिन एक बात जो इस डायलॉग ने हमें सिखाई है ना वो बहुत सही है। ज़िंदगी में ना कभी कभी ज़रूरी होता है कि खुद को और अपने आप को भी हम सीरियसली लें, लेकिन कितना सीरियसली लेना है ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम लाइफ में हर एक काम को लेकर, हर एक बात को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर इतने सीरियस हो जाते हैं ना कि डे टू डे लाइफ में लाइफ को कैसे जीना है यही भूल जाते हैं। भाई जहाँ औरों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं ना, औरों की खुशी के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना भूलें कि हमारी भी ये एक ज़िंदगी है। सब कुछ करना है, फ़र्ज़ भी खूब अच्छी तरह से अदा करना है, ऑफिस में काम भी अच्छे से करना है, लेकिन जो काम जहाँ का है ना बस उसे छोड़कर अगले मुकाम तक पहुँचना है। ऑफिस का काम ऑफिस, घर का काम घर, बस चीज़ों को मर्ज और मिंगल ना करो। बिकॉज योर वर्क इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट योर लाइफ कम्प्लीटली। द सेम वे आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आपकी खुद की ज़िंदगी आपकी सबसे बड़ी ज़िंदगी है, तो चलिए उस खुद की ज़िंदगी में मस्ती मज़ा जो है लाइफ को खुशनुमा बनाने के लिए हर दिन मेंटेन रखें, और जहाँ सीरियस होकर काम करना है वो काम को ज़रूर करें। और मेरी ये बात अगर अच्छी लगी जो आपको बहुत सीरियसली मैंने कही है, जो मेरे पापा ने मुझे सिखाई है, तो मुझे एक थैंक यू मैसेज भी भेजें। 5000186 I'm eagerly waiting for your messages. Instagram मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। Meanwhile उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में इस फिल्म का सबसे खूबसूरत गाना जो मुझे बेहद पसंद है मैं आप तक पहुँचाती हूँ। Enjoy, बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieta la burga. Mirchi, burga. Burga.
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल
4: लग रहा है? नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। अच्छा चारू, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। अच्छा चारू, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ।

0: थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
3: 89.6
1: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: आज यहाँ होती हूँ जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। लेकिन सच कह रही हूँ कि गर्मी का तड़का यानी कि जो दाल में हम बघार लगाते हैं ना, ये काम बार बार इस वक्त सूरज चाचो हमारी जिंदगी में क्यों कर रहे हैं मुझे सच में नहीं पता। भाई भीषण गर्मी, अपरंपार गर्मी, मतलब जितने भी टर्म्स या जितने भी पर्यायवाची सिनोनिम्स कह लो बचपन में पढ़े थे ना गर्मी से जुड़े हुए, वो क्या होते हैं ये महसूस करने का मौका भी आएगा, कुछ उस कदर आएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लिटरली बता रही हूँ, मतलब अगर इस वक्त अगर आप बाहर निकले ना एंड जिस दिन गर्मी के साथ हवा चल जाए, भाई स्किन में जो फीलिंग होती है ना, मतलब वो बचपन में मस्ती करने में चटाक से एक तमाशा पड़ा था ना, उससे ज़्यादा चपेट जो है इस वक्त लगती है। वेल टेम्परेचर जो है 45 को क्रॉस कर चुका है, 46-47 इज़ वेरी आम एंड नॉर्मल बात नाउ एंड मिनिमम इज़ अराउंड समवेयर 35। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें एंड जितना ज़्यादा हो सके जितने भी वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं ना ये मौसम के बार बार वेरिएशन के कारण, उससे खुद को संभाल कर रखें। बाकी आपकी कलेजन दिमाग की ठंडक के लिए तो मैं हुई, टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट एंड वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
1: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब, फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
0: हाँ जी, जुबिन नौटियाल की आवाज़ है, अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Weather Check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future, call now 3100813.
1: अब ऐसी गर्मी में जब जब मौसम की बात हो, इंसान खुदा को याद ना करे तो फिर किसे करे, जरा एक बात बताना।
2: मिर्ची अंशु
1: Hey, welcome back. You're listening to मीठी मिर्ची and this

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: देखो इस वक्त तो आप ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकते, मतलब किसी हाल नहीं कह सकते कि आप लुट गए भाई, ये तो माला माल होने का टाइम है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. चलिए आज सुबह सुबह आपसे एक बात पूछती हूँ, जितनी भी कमाई धमाई हुई है ना, जितने भी पैसे आए हैं, क्या हाल है? मतलब सारे ड्यूज, घर का रेंट इन सब कुछ पे करने के बाद बचे हैं या उड़ा दिए गए पूरे? एंड अगर बचे हैं, अगर इसी इंतज़ार में थे कि एक्सचेंज रेट थोड़ा बढ़ जाए उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाए, तो ज़रा देखें आज पैसा बोलता है तो क्या ही बोलता है। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, अगर आज के पैसे को देखने की कोशिश करें, सबसे पहले अगर आपको नेपाल लेकर मैं चलूँ तो भैया इतना समझ जाएं कि आपको एक कतरी रियाल के अगेंस्ट मिलेंगे 41.71। बढ़िया है जी, नेपाली रुपया जो है और भी उछाल मारते जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में अच्छा एक्सचेंज रेट आया है। लेकिन इंडिया वालों, तुम्हारी तो उस वक्त लॉटरी लगी हुई है यार, 26.121 कतरी रियाल के अगेंस्ट इससे बढ़िया एक्सचेंज रेट मिले तो क्या ही मिले। लेकिन जरा देखिए पाकिस्तानी रुपए की क्या हाल है, इट इज 76.57। बढ़िया यार, लॉटरी वाला सिलसिला तो यहाँ पर भी चल ही रहा है। लेकिन अगर मैं बांग्लादेश पहुँचने की कोशिश करूँ तो वहाँ की क्या हाल चाल है, इट इज 33.97। मतलब यहाँ पर भी तहलका जो है वो मचा हुआ है, लेकिन असली डंका अगर कहीं बच रहा है तो वो है श्रीलंका में, एंड एक्सचेंज रेट है 91.84। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए जाना, टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑड एंजॉय बंदी का नाम।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके। यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ, एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
3: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM.

0: यार वो सपने सपने ही क्या
1: जो तुमने जागते हुए देखे। सपने तो वो हैं जो तुम्हें कभी सोने ही ना दे।
2: मिर्ची अंशु
1: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. यार जिंदगी में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी सर्कमस्टांसेस के चलते अपने सपनों को छोटा कर देते हैं एंड दूसरे वो जो अपने सपनों की वजह से अपने हालात यानी कि सर्कमस्टांसेस को ही बदल देते हैं। एंड दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले एक ऐसे शख्सियत की कहानी आज आपके बीच पेश करना चाहूंगी मैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक छोटे से शहर रामेश्वरम का लड़का जो बचपन में अखबार बांटता था, वही लड़का आगे चलकर अगर कुछ बना तो वो है भारत का मिसाइल मैन, साइंटिस्ट एंड फिर देश का राष्ट्रपति। लेकिन जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? ना मिसाइल्स है ना प्रेसिडेंसी। उन्होंने करोड़ों लोगों को यकीन दिलाया कि मैं भी कर सकता हूं और शायद इसीलिए उनकी बातें आज सिर्फ कोट्स नहीं है, एक डायरेक्शन लगती है। एक लाइन उनकी हमेशा याद रखिएगा, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन फर्स्ट बर्न लाइक द सन। यार कितनी गहरी बात है। हम सब सक्सेस देखना चाहते हैं लेकिन स्ट्रगल को स्किप करना चाहते हैं। हम डेस्टिनेशन तो चाहते हैं लेकिन जर्नी से दोस्ती ना, वो ना करना। डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें सिर्फ इतना ही सिखाती कि सपने देखना तो आसान है लेकिन उनके लिए रोज उठकर काम करना ही असली जीत और असली हिम्मत है। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस भी मिशन में लगे हैं ना, दिल से लगे रहिए। क्या पता आपकी कहानी भी किसी दिन किसी RJ की माइक से लोगों के दिलों तक पहुंचे। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: यार सच कह रही हूँ, ये जो राजा है ना, ये तो हमारे दिल में बसता है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. अब जो राजा आपका इतना ख्याल करे, आप जब चाहो आपके पास हो, अब ऐसे में आप उसे दिल में ना रखें तो फिर क्या ही करें। मैं तो फलों के राजा यानी कि आम की बात कर रही हूँ। देखो यार, कतर में रहने वाले ये बात जरूर एडमिट करेंगे, बाकियों की जिंदगी में आलम होता होगा कि साल के 3 महीने उनकी लाइफ में आम आए और कोई खास एक्सपीरियंस दे। ये खास एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में कतर के चलते 12 महीने में कम से कम 8 से 9 महीने तो जरूर होता है। इन सबसे खास बात, हम सिर्फ अपने देश नहीं, न जाने कितने और देशों के आम को खास तरह से टेस्ट कर पाते हैं, चख पाते हैं, उनका स्वाद जो है मजे से उठा पाते हैं। तो भैया, अभी अभी हमारी जिंदगी में अगर कुछ आया था, सो दैट वाज इंडियन मैंगो एग्जीबिशन। एंड इस हफ्ते अगर कुछ दस्तक देने वाला है तो वो है पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। बिल्कुल जी, एक बार फिर से सुख वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में आमों की बहार होगी। एंड सबसे खास बात, फुल्ली एयर कंडीशन टेंट के अंदर जो पाकिस्तानी ना ही सिर्फ आपको आम मिलेंगे बल्कि उसके अलावा उनसे बनी हुई बहुत सारी डेलिकेसीज भी आप चख पाएंगे। तो इसे कहते हैं भैया आम की पेटी भी ले आओ, साथ में आज का डिनर भी कराओ। तो कब जाना होगा ये बात बता देना। 9 जुलाई को शुरू होगा, 18 जुलाई तक चलेगा एंड आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। मिलूंगी वहां पे, बिल आप भरना, अच्छे अच्छे स्टॉल्स पे मैं आपको लेके जाऊंगी। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुम तो ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: अरे ओ प्रॉब्लम सॉल्वर, सारा बात तो सुन लो.
2: मिर्ची अंशु.
1: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. एक बात बताना, क्या कभी नोटिस किया है कि हम सबके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है? जैसे ही कोई अपने दिल का हाल बताना शुरू करें, हम तुरंत जवाब ढूंढने लगते हैं. अरे यार टेंशन ना लो, ऐसा कर लो, इतना मत सोचो, अरे मूव ऑन करो ना, सब ठीक हो जाएगा. और शायद ये सारी बातें हमें लगता है कि हम सामने वाला का ख्याल करने के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है, हो सकता है जिस शख्स का हम इतना हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त इमिजिएटली उसे शायद किसी जवाब की जरूरत ना हो. सकता है वो सिर्फ इतना चाहता हो कि कोई बिना घड़ी देखे उसकी बात बस सुन ले, बिना जज किए उसका दर्द महसूस कर ले और बिना कोई राय दिए बस उसके साथ उसकी बातें सुनते रहे, उसके साथ बैठे रहे. क्योंकि क्या है ना यार, हर बार इंसान इसलिए नहीं टूटता कि उसके पास कोई सलूशन नहीं, कभी कभी वो इसलिए टूट जाता है क्योंकि उसके पास कोई बातें सुनने वाला नहीं. और शायद इसीलिए तो कहते हैं कि रिश्ता वो नहीं जो हर सवाल का जवाब दे, रिश्ता तो वो है जो हर खामोशी को बस समझ ले. हर दर्द को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक साथ एक एहसास ही सबसे बड़ी हिम्मत होती. महसूस करके देखिए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: दोस्ती कहीं कुछ सुन ले मैडम। नो सॉरी नो थैंक यू।
8: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा, मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: एक बात होता है कि कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज से ऑब्सेशन हर किसी को है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. ये वही भाषा है कि अगर कोई फर्राटेदार तरह से बोलने लगे तो हमें लगता है भाई ये कितना नॉलेजेबल है, और अगर हम बोल लें तो हम खुद को समझते हैं हाँ जी हम किसी से कम नहीं। वैसे इसके ऑब्सेशन से ये भी पीछे ना रह पाए।
2: अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज़ इंग्लिश इज
0: वेरी फनी लैंग्वेज, कंप्लीट इसे मैं कर दूं। अगर आपको लगता है कि आपका भी इंग्लिश को लेकर ऑब्सेशन बस कुछ ऐसा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हुए आपको कभी कोई हेजिटेशन हुई है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। यार इसी इमोशन को बहुत ही खूबसूरती से अगर किसी फिल्म ने कैप्चर किया तो उस फिल्म का नाम है इंग्लिश विंग्लिश। एक सिंपल सी होममेकर की कहानी जो दुनिया को नहीं पहले खुद को प्रूव करना चाहती है, और इसीलिए ये फिल्म सिर्फ अंग्रेजी सीखने की कहानी नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी की कहानी है। एंड अगर आपको लगता है कि इस मास्टरपीस को आपने बड़े स्क्रीन पर कभी नहीं देखा तो भाई ये आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कटारा इन कोलैबोरेशन विद द एम्बेसी ऑफ इंडिया इज होस्टिंग अ पब्लिक स्क्रीनिंग ऑफ English Winglish on 14th of July at 6 p.m. at the Drama Theatre, which is located inside Building 16. So what are you waiting for? जाइए बड़े पर्दे में एक बार फिर से इस फिल्म का मजा जो है उठाई आइए। अगर आपको देखनी है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का जो QR कोड है वो कटारा के ऑफिशियल पेज में आपको मिल जाएगा। Enjoy, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood Bollywood Bolda Only on Mirchi It's Hot
1: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
2: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
1: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिंद सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
4: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
3: Relative se advice lo to kehte hain.
5: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
6: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070 7687.

0: नहीं, दुआओं में तो आप याद रखते ही हो, लेकिन घर पे कुछ अच्छा बने तब याद करो तो जरा और अच्छा लगे।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। इसके साथ ही आपको कोई तो खास रिमाइंडर है जो देना भी चाहती हूँ। देखो, मुझे मालूम है जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ ना, उतना ही प्यार आप भी मुझसे करते हैं, लेकिन अब इस बात का मुझे एहसास तो मैं आपको मौका भी दे रही हूँ एंड दस्तूर भी बता रही हूँ। भाई साहब, जब भी घर पे कुछ अच्छा बने, खासकर अगर चाट बने, तो आपने मुझे ज़रूर बुलाना है। अभी चाट की याद मुझे अचानक से क्यों आ गई, क्या ना वीकेंड में मैं इंडिया गई हुई थी और इंडिया जाऊँ एंड वहाँ जाने के बाद मैं वो चाट की गली एक्सप्लोर ना करूँ, ना ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहला काम जो है मेरी आइटिनरी में यही ऐड होता है कि किस तरह से मुझे मैक्सिमम लोकल चाट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। तो अगर घर पे पानी पूरी बन रही है, घर पे चाट बन रहा है, तो अंशु को बुलाना है, ज़रूर बुलाना है। क्या करूँ यार, एक बज रही है, भूख का टाइम हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना ज़रूर याद आ रही है। हविंग सिद्धार, अगर कतर की बात करूँ तो मेरा सबसे फेवरेट अरबिक डिश अगर कुछ है तो वो है कुनाफा एंड साथ उमाली। आई मीन एब्सोल्यूट लव दीज टू ऑप्शंस। कहाँ कहाँ जाऊँ, ये दोनों कतर में मुझे सबसे अच्छे कहाँ मिलेंगे? 5000186 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या तो फिर मिर्ची अंशु। अभी के लिए निकलते हैं जी, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू कतर्स नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: बड़े होते होते रियलाइज होता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या चीज होती हैं, और हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागने का मन करता है। लेकिन बचपन में उल्टा था, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भागा करते थे कि मुझे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जल्दी बड़ा होना है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi, and I still remember. हम या तो अपने छोटे भाई बहनों को पालने का काम किया करते थे, हमें बड़ा मजा आता था बड़े बनने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में, या तो हमारे गली कूचे का कॉलोनी का कोई भी पपी होता था या कोई किटन होती थी तो उसका जिम्मा हम ले लिया करते थे। मतलब अगर ऐसा कुछ मिल जाता था ना हमें, तो स्कूल से आए नहीं, बैग रखा नहीं और सीधे उस पपी या किटन के पास। And I still remember, बचपन में ना मैंने कुछ दिनों के लिए एक बिल्ली पाली थी, उसका नाम रखा था हमने हेमा। और है ना, उस बिल्ली का जिम्मा मैंने ऐसा लिया कि मैं अपना खाना पीना भूल जाया करती थी, उसी को देखा करती थी। उस बिल्ली ने हालांकि मुझे खूब स्क्रैचेस दिए, लेकिन फिर भी मैं उसकी मोहब्बत में इतनी पागल थी कि मैंने उसको पाला। लेकिन मेरी मोहब्बत ना उस बिल्ली की मोहब्बत से ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि वो बिल्ली मेरी मोहब्बत से ही डर गई यार। एक दिन वो बिल्ली पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और तब से लेकर आज तक हेमा सिर्फ और सिर्फ मेरी कहानियों में ही रह गई, वो मुझे कभी नहीं मिली। ऐसा ही कुछ अभी कल की बात है मेरे साथ हुआ, कि कल शाम को मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था और एक किटन मुझे नजर आया, एंड मैंने उसको देखा, मैंने उसको हाय बोला, एंड उसको लगा कि मैंने उसको घर के अंदर इनवाइट कर दिया है, और वो आ गया सीधा चल के। मैंने भी उसे मना नहीं किया, वो आया, मैंने उसे खिलाया पिलाया, थोड़ी देर में हमारी दोस्ती हो गई, जो कि मेरी बिल्लियों के साथ तब से लेकर आज तक नहीं हुई थी इतनी अच्छी तरीके से। एनीवेज, वो थोड़ी देर में आके मेरी गोद में बैठ गया, मैंने उसको खूब मसाजे दी, इतना प्यार किया, और मेरा दिल उसके ऊपर पूरी तरीके से आ चुका था। लेकिन ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग वो बिल्ला भाग गया, एंड क्लियरली उस बिल्ले को मेरे अंदर रेड फ्लैग्स नजर आ गए थे, क्योंकि मुझे भी उससे हद से ज्यादा मोहब्बत जो हो गई थी, डर के मारे भाग गया होगा। बस आज का ये किस्सा पुराने हेमा के किस्से से जाके जुड़ गया, कि किस तरीके से हमें पेट से मोहब्बत हो जाया करती थी। शायद ये चीजें आज भी नहीं बदली हैं, वो अलग बात है कि यार एक किटन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन बिजली के बिल भरने में ना मुझे बड़ी मौत आती है। एनीवेज, अभी तो हम चलते हैं मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए उसी तरफ जहाँ 90s और अर्ली 2000 की दुनिया बसी हुई है। सो यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rápala. Burga, burga. La fiesta la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगामा पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारेगामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारेगामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सब स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
4: 89.6, 89.6, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जीत मूवी का जो गाना है ना यारो यारा, उसकी जो कोरियोग्राफी है और उसके जो सिग्नेचर स्टेप्स हैं, वो भले हमें कितने भी फनी क्यों ना लगे, लेकिन आज भी जब किसी पार्टी में यारो यारा बज जाता है ना, हम वही स्टेप्स फॉलो करते हैं यार, अपना कुछ नया नहीं निकालते हैं।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, सनी पाजी तो छा गई थी जी इस स्टेप के बाद वाकई में, एंड छा गई थी ये फिल्म भी। हाँ, इट वाज अ सुपर डुपर हिट। लेकिन ये फिल्म की एक बड़ी खास बात रही, और वो ये कि 24 साल पहले करिश्मा कपूर के पेरेंट्स बबीता जी और रणधीर कपूर जो हैं, उन्होंने भी एक फिल्म करी थी जिसका नाम था जीत। एंड देन 24 साल बाद करिश्मा ऑल्सो डिड दिस फिल्म जिसका नाम था जीत। और ये फिल्म और भी ज्यादा खास हो जाती है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जीत की सेट्स पर ही तबू एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म साजिद नाडियाडवाला, दे केम क्लोजर। वेल एक्चुअली तबू और साजिद नाडियाडवाला यूज्ड टू बी फ्रेंड्स अर्लियर एज वेल, क्योंकि तबू दिव्या भारती की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। एंड पोस्ट दिव्याज डेथ, तबू एंड साजिद नाडियाडवाला बिकेम फ्रेंड्स, एंड तबू कुड अंडरस्टैंड हिज इमोशंस एट दैट टाइम। लेकिन ये दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हो गई दोनों को ही नहीं पता लगा, एंड दैट हैपेंड ऑन द सेट्स ऑफ जीत। इवेंचुअली इस रिश्ते ने कोई मोड़ नहीं लिया बिकॉज ऑफ द रीजन की तबू फेल्ट कि साजिद नाडियाडवाला इमोशनली अवेलेबल ही नहीं थे, वो अपनी वाइफ दिव्या के लॉस से निकल ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से तबू डिसाइडेड टू मूव ऑन इन हर लाइफ। एंड देयर इज वेयर दिस रिलेशनशिप एंड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर बिगिंस। हालांकि साजिद नाडियाडवाला एंड तबू आर स्टिल रियली गुड फ्रेंड्स। साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा ही फेमस शेर है, और ऐसी लव स्टोरी सुनती हूँ ना तो वो शेर मुझे अक्सर याद आ जाता है। कहते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चांटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चांटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चांटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
7: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं सुन सकते।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s की बड़ी हिट फिल्म जीत, इसके लिए कहा जाता है कि यार ये फिल्म वॉज इंस्पायर्ड बाय टू ऑफ बॉलीवुड क्लासिक.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड दोज टू बॉलीवुड क्लासिक्स आर मुकद्दर का सिकंदर, जो कि ऑफकोर्स अमित जी बच्चन जी की थी, एंड द अदर वन इज राजपूत, जो कि राजेश खन्ना स्टारर फिल्म थी. एंड इन दोनों मूवीज के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि जीत में भी देखे गए हैं. अब ये इत्तेफाक है या इंस्पिरेशन है, ये तो इस फिल्म के डायरेक्टर ही जाने. बट हाँ, मुकद्दर का सिकंदर जिस तरीके की फिल्म थी, उससे जीत फिल्म का जो काफी तालमेल है वो बैठता है. एंड जीत वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसमें सलमान खान का गुड बॉय इमेज वाला रोल था, जिसमें वो एकदम मामाज बॉय, सीधे साधे से लड़के थे. एंड सनी देओल ऑन द कॉन्ट्ररी, ही वॉज प्लेइंग द नेगेटिव रोल, द आक्रोश वाला रोल. एंड आई थिंक सनी देओल का उस टाइम पर यही वाला जोन चल रहा था. लेकिन मजे की बात ये हुई कि सलमान खान इतने हाईलाइट नहीं हुए इस फिल्म के अंदर जितना सनी देओल हुए अपने रोल को लेकर, क्योंकि वो रोल इतना लाउड था कि सबने उसे देखा भी और सुना भी. तो हुआ ये कि इस फिल्म में सलमान खान की जो पोजीशन थी वो थोड़ा सा बैक सीट ले चुकी थी, एंड सनी देओल फ्रंट पेज पे खेल रहे थे. लेकिन जब यही चीज डर मूवी में हुई, जहां शाहरुख खान के नेगेटिव कैरेक्टर ने सनी देओल के पॉजिटिव कैरेक्टर को ओवरशैडो कर दिया, तो सनी देओल बड़ा बुरा मान गए थे. अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई यार, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या थी? ये तो किस्मत का खेल है यार. एक तरफ आप चले, कहीं दूसरी तरफ कोई और चला. जिसकी किस्मत में चलना लिखा था वो चला, और जिसकी किस्मत में लिखा था ना चलना तो वो ना चला. चलो अभी तो आप और मैं आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
2: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
1: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
2: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
2: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
1: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
4: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
7: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mercy Helpline?
1: Hi, Anjali. Mercy Helpline. Ball.
0: You know, I love twinning. But mera BF matching kapde kabhi nahi pehenta. Wo har baar na bol deta hai. Kya karun?
1: Hi. To galat thodi bol raha hai. Ladke skirt mein thodi acche lagte hai, Anjali.
2: Mast joke mara re. Ye has re halkat has.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983 इट्स

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Coca-Cola. अभी यही वर्ड ना बिना होठों को टच किए बोल के बताओ। हाँ, फंस गए ना।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड भले ही आज मैं डाइट कॉन्शियस होकर बिल्कुल ऑफ कोला ड्रिंक्स हो गई हूँ, लेकिन एज अ किड एड्स ये डिसाइड किया करते थे कि कौन सा कोला ड्रिंक खरीदना है, क्योंकि कभी कोई ड्रिंक कोई विनर स्कीम लाता था तो कभी कोई और। मैं तो ना बिल्कुल बिक जाती थी टू द मार्केटिंग आइडियाज, एंड आई यूज्ड टू कलेक्ट एंड कीप कोक की बॉटल्स के ढक्कन, बिकॉज़ आई यूज्ड टू फील लकी कि क्या पता ऐश्वर्या राय से मिलने का मौका ही मिल जाए। दो आई वॉजंट अ क्रेजी फैन ऑफ हर्स, लेकिन आई डेफिनेटली वॉज स्टारस्ट्रक। और राजपाल यादव का ये एड, विच वॉज अ फन थिंग ऑन टीवी एट दैट टाइम, याद है आपको?
2: आपका फूटू रामू जी।
3: रामू जी,
4: इनकी तो किस्मत बदली यार।
1: लकी रामू थे ये इस एड के, और हम सोचते थे कि जब रामू लकी हो सकता है तो हम क्यों नहीं। कीप ट्राइंग, एंड ऑफ कोर्स मेरी गाड़ी कभी ऐश्वर्या राय तक नहीं पहुंची। हाँ, लेकिन मेरी घड़ी जरूर आगे बढ़ गई, वक्त बदल गया, मैं बड़ी हो गई और समझ में आ गया कि ये सब मार्केटिंग गिमिक्स थे यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na vidvala burka.
1: Milchi, burka. हेलो
2: हेलो भाई राज, ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है, हैं?
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बताओ भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे कमाते
1: हो?
2: तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से।
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
2: मैंने ही काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
1: जेब काटी, तूने पर्स काटी ऊपर से,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: तुम्हें एड्रेस दे दे अपना, वो कर दे, मैं तो कॉल कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: जा सिमरन, जा जीरे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
6: हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज बड़े होकर हम क्या ये कैमोमाइल टीज पीते हैं यार अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए. टैल्कम पाउडर का नाम सुना है?
2: ये है नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड वाकई में यार टैल्कम पाउडर की खुशबू सिर्फ खुशबू नहीं है भाई, थेरेपी है. मतलब ऐसा है कि अगर कोई टैल्कम पाउडर लगा के आया होता है ना, या कहीं से भी एकदम एक यू नो खुशबू सी आ जाती है, एक हवा में तैरती हुई खुशबू सी आ जाती है, तो भाई हम तो खो जाते हैं. हमारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है ना, सब भूल जाते हैं. एंड नर्वस सिस्टम आई टेल यू वाकई में इतना काम डाउन हो जाता है ना, अपने आप जो जितना भी स्ट्रेस है ना वो कहीं दिमाग के कोने में जाके छुप के डर के मारे बैठ जाता है, बिकॉज टैल्कम पाउडर की खुशबू जो है वो टेक ओवर कर लेती है यार. और ये सब तब है जब आज के जमाने में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के परफ्यूम्स आ गए हैं, उस पर भी जब कभी टैल्कम पाउडर की खुशबू आती है ना यार, तो परफ्यूम्स की खुशबू से तो ऑफकोर्स अच्छा तो लगता है कि हाँ क्या खुशबू है, वाह वाह वाह. लेकिन टैल्कम पाउडर की खुशबू से जो नशा होता है और जो हमारी आंखें बंद होती हैं और हम तैरता हुआ महसूस करते हैं, वो और किसी में नहीं है भाई, ये जादू. हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे ऑल ऑफ अ सडन हमारी जिंदगी में एक ट्रांजिशन हो गया है एंड वी टर्न इनटू द टैल्कम पाउडर के एड का एक किरदार. आप बताओ आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि टैल्कम पाउडर की खुशबू आए नहीं कि दिल का कोई ऐसा तार छिड़ जाता है कि हम भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, बस टैल्कम पाउडर की खुशबू ही हमें सुकून दे रही होती है. कुछ तो बात है यार टैल्कम पाउडर की खुशबू में. बचपन से लेकर आज तक भी ना ये जादू इसी तरीके से काम कर रहा है. मेरी कजिन है वो बहुत टैल्कम पाउडर लगाया करती थी, लेकिन शी ऑलवेज यूज्ड टू स्मेल सो प्लेजेंट कि उनके पास बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगता था. उन्हें लगता था कि मुझे उनसे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, मुझे एक्चुअली उनके टैल्कम पाउडर से मोहब्बत थी. आप भी बताओ ना यार आपकी टैल्कम पाउडर की मोहब्बत किस हद तक गई हुई है. डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: If you remember, तो एक फिल्म आई थी सुष्मिता सेन, सलमान खान और दिया मिर्जा की। फिल्म का नाम था तुमको ना भूल पाएंगे। बड़ी क्यूट सी फिल्म थी। हालांकि फिल्म का कॉन्सेप्ट वॉज पुनर्जन्म, जो कि वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो सीरियल्स में और पुरानी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। और इस फिल्म में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है, उस गाने का कॉन्सेप्ट भी कहीं से उठाया गया है।
2: मिर्ची, टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस फिल्म में एक बड़ा ही प्यारा सा गाना था, और वो गाना था ये
3: बेखुदी दीवानगी, तुम्ही से हर मेरी जाने जाना।
1: Well, the point is कि this गाना, इसकी धुन has been copied from an English song जिसका की नाम है Time After Time, which was sung by Cyndi Lauper, and the gana goes this way। And if you're wondering कि इस गाने को कंपोज किसने किया था, तो that was साजिद एंड वाजिद। बड़े दिनों बाद कोई नई जोड़ी का नाम निकल के आया है इस कट कॉपी पेस्ट गैंग में। You know the usual names जो फ्लोट करते रहते हैं। और अगर आपके पास भी 90s या early 2000 की ऐसी कोई मूवी या फिर कोई गाना है जिसके बारे में आपको पता लगा है कि ये कहीं से कट कॉपी एंड पेस्ट है, तो DM करो on my Instagram handle which is Mirchi Sara, and stay tuned to Mirchi, it's hot।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
2: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है। टाइगर श्रॉफ, फैंटास्टिक बॉडी। रणवीर सिंह, एक्सट्रीमली फिट। एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन, ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: You know, why did Juhi Chawla and Aamir Khan stop working with each other?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा and you tune into Mirchi. And well, एक इंटरव्यू में जूही ने ये किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि जब वो और आमिर इश्क फिल्म में साथ काम कर रहे थे, आमिर यूज टू बी अ प्रैंकस्टर और अजय देवगन के साथ मिलके ये लोग ना लोगों के साथ प्रैंक्स खेलते ही रहते थे। तो बारी आई एक दिन जूही चावला की जब उनके साथ इन लोगों ने कोई प्रैक्टिकल जोक किया and she broke into tears because of that, had a fight with Aamir Khan and went back home, and agle din she did not turn up for the shoot, jiski wajah se Aamir unse bada naraz hue aur in dono ne is kisse ke baad 5 se 7 saalon tak baat hi nahi ki. Lekin jab unhe Aamir aur Reena ke divorce ka pata laga, so she rang up Aamir and asked him to meet her. And well, इससे साबित होता है कि इन दोनों दोस्तों ने बात करनी बंद की थी, लेकिन एक दूसरे की फिक्र करनी बंद नहीं करी थी। एंड दिस ऑल्सो सेज इट ऑल कि छोटी मोटी तलखियों से कुछ सालों के फासले आ सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ते की नींव मजबूत हो ना बाबू मुशाय, तो रिश्ता लाइफ टाइम गारंटी कार्ड के साथ चलेगा। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefef हेलो
1: मिल गया
2: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेस वन से फेस टू गई थी, याद आया है आपका?
0: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
0: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
0: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
0: मैंने सोचा
2: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पटाक।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कम है के?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: FM मिर्ची वन, It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear school ke bahar thele par milne wali imli.
2: Yaadon ko chitthi.
1: आज न जाने क्यों तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हें याद है स्कूल की आखिरी घंटी बजती नहीं थी और हम पहले से ही बस्ते की जगह जेब टटोलना शुरू कर देते थे, सिर्फ 2 रुपए के लिए। वही 2 रुपए जो मम्मा टिफिन के लिए दिया करती थी, लेकिन मन तो तुम्हारी तरफ ही खिंचा चला जाता था। तुम कोई आम इमली तो नहीं थी ना, तुम तो वो ठेले वाली इमली थी जो न्यूज़पेपर या मैगजीन के पेपर के ऊपर बिछा कर दी जाती थी। ऊपर से लाल मिर्ची और काला नमक का जादू बिखेर दिया करते थे भैया उस पर छिड़क कर। कभी कभी लगता था कि वो मसाला नहीं, हमारे बचपन की शरारतों का कोई राज है। तुम्हारे ठेले पर ना भीड़ लगी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरी क्लास ही वहाँ इकट्ठा हो गई हो।

0: बड़ी नाप तोल कर कहती थी कि भैया थोड़ी और इमली देना ना, मसाला थोड़ा ज्यादा कर दो ना।
1: और ठेले वाले भैया जो रोज एक ही तरह के कपड़े में नजर आया करते थे, वो कभी मुस्कुराते कभी टेंशन में होते और जल्दी जल्दी काम करते हुए सबको फटाफट फ्री करने की कोशिश कर रहे होते थे। कभी सोचा ही नहीं था यार कि जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जब इमली से ज्यादा कीमती चीजें मिलेंगी, पर तुम जैसी सादगी फिर नहीं मिलेगी। आज जब बड़ी बड़ी दुकानों पर सब कुछ पैकेट में मिलता है ना, साफ सुथरा ब्रांडेड, लेकिन बेमजा, तो तुम्हारी वो अखबारी खुशबू, वो मसालेदार स्वाद और वो हाथ से इमली का मजा चखते हुए और चाटते हुए जो हम हरकतें किया करते थे ना, वो सब याद आता है। शहर तो बहुत बदल गए हैं, पर तुम आज भी वही हो, किसी पुरानी स्कूली बच्चे की याद में, किसी भूले हुए ख्वाब में, या फिर किसी आरजे की कहानी में। तुम्हारी वो खट्टी मीठी दोस्त जो अब बड़ी हो गई है, लेकिन दिल आज भी स्कूल की आखिरी घंटी के इंतजार में बैठा रहता है। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज में राजा फिल्म से दिस गाना इस कैसेट के साइड बी का पांचवा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: डम डम डरी डम डम डरी डम डम डरी डम। ये म्यूजिक यार, ये दिमाग से जाता ही नहीं है। इट्स सच अ वंडरफुल अपबीट म्यूजिक। और इस गाने की पिक्चराइजेशन में ना मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या पसंद आया था? माधुरी दीक्षित ने वो जो व्हाइट कुर्ता नहीं पहना हुआ था, वो मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना माधुरी के ऊपर। इनफैक्ट ये जो मैंने बचपन में पहली बार माधुरी दीक्षित को कुर्ते में देखा, बंदे का कुर्ता है ऑफ कोर्स, वो बंदियों वाला कुर्ता है भी नहीं, ये देखने के बाद आई फेल्ट लाइक यार ये तो मुझे भी चाहिए। एंड वहीं से इंस्पायर होके आई आल्सो हैव अ मर्दों वाला व्हाइट कुर्ता। अच्छा लगता है यार घर में कभी कभी पहनने में। एंड सच बात तो ये भी है कि कंफर्टेबल भी बहुत होता है। वेल कमिंग बैक टू दिस सॉन्ग, एक्चुअली इस गाने की पिक्चराइजेशन की एक बड़ी ही खूबसूरत बात है कि एक तरफ तो ये दिखाते हैं कि दो जवान दिलों की धड़कने मिल रही है और बाकी जो पब्लिक है दे आर ऑल ओल्डी। मगर वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, और इस गाने में जो ओल्डीज के एक्सप्रेशंस है ना, वो मुझे संजय कपूर के एक्सप्रेशन से भी ज्यादा अच्छे लगे यार। क्या पार्टिसिपेशन है यार वो पूरी की पूरी गैंग का। और ये गाना ना हम यहाँ तक ही गा पाते थे कि जादू कोई छाने लगा, मुझको मजा आने लगा, बस में नहीं है अरमा मुझे सीने से लगा। इसके आगे हम किस में आगे गा ही नहीं पाते थे, शर्म जो आती थी ना एज अ किड। हमारे लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करना आसान नहीं था यार, हम उस जेनरेशन को बिलोंग करते हैं। चलो जी, नाउ विद दिस कमिंग अप दिस ट्रैक आपके लिए। और जाते जाते अब आपसे कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखिए कद तो चाहे ऊंचा लंबा हो या फिर ठीक ठाक, भाई गर्मी सबको लग रही है। गाड़ी का एसी बेचारा मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गर्मी का आलम यूं है कि आजकल दोहा में सुबह नहीं होती है, सीधे दोपहर होती है। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 4:04 के करीब का।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एम्बाप्पे गोल करके फ्रांस जिताया। राउंड ऑफ 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। कनाडा को मोरक्को ने 3-0 से हराकर एक बार फिर से क्वार्टर फाइनल में एंट्री मारी है। वहीं अब बात करें तो रनर ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप फ्रांस जो है वो पैराग्वे को 1-0 से हरा चुके हैं। एम्बाप्पे के इकलौते पेनाल्टी से आज 1-0 गोल से हार कर पैराग्वे घर चला जाएगा और अब मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल में, लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल वाला है। यस, क्वार्टर फाइनल में ही सेमीफाइनल का मुकाबला देखने को मिलेगा जहां पर एक बार फिर से टकराएंगी फ्रांस एंड मोरक्को की टीम। एंड क्या पिछली बार जो काम मोरक्को का अधूरा रह गया था कतर वर्ल्ड कप में, वो इस बार यूएस मेक्सिको कनाडा वर्ल्ड कप में पूरा होगा। इसके लिए तो इंतजार कीजिए। अब अगर बात करें तो अब अगले मुकाबले कुछ ये होने जहां पर ब्राजील वर्सेज नॉर्वे का इंपॉर्टेंट मैच आज खेला जाएगा 11:00 और फिर 3:00 करीब मेक्सिको की टीम भिड़ेगी इंग्लैंड से और दो और क्वार्टर फाइनलिस्ट आगे पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स। फिलहाल तो मस्त बॉल गौरव आ गया लेकर शाम शानदार में ढेर सारी बातें मिर्ची थॉट।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? है राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोले परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे, तेको पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता? आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा,
0: मेरी मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
3: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: जिस काम के लिए तुमने गाड़ी ली है ना वही करो। हाँ जी, इलीगल कोई काम नहीं। मस्त मौला गौरव। बता दे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक एडवाइजरी रिमाइंड कराई है मोटरिस्ट को जो कि प्राइवेट व्हीकल नंबर प्लेट के साथ इलीगल टैक्सी चला रहे हैं।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐसे लोगों को याद दिलाया है कि आपने व्हीकल को जिस भी पर्पज से लिया है, अगर उस पर्पज के अलावा आप इसको यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग देम एज टैक्सीज, तो याद रखिए ये एक ट्रैफिक वायलेशन का बहुत बड़ा फाइन आप पर आ सकता है। लीगल अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। तो प्लीज इस बात को याद रखिए कि हमें ऐसे ऑफिशियल चैनल्स के ही थ्रू, ऑफिशियल टैक्सी सर्विसेज कंपनी के ही थ्रू जाना है जो कि रजिस्टर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐसे लोगों को याद दिलाया है कि आपने व्हीकल को जिस भी पर्पज से लिया है, अगर उस पर्पज के अलावा आप इसको यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग देम एज टैक्सीज, तो याद रखिए ये एक ट्रैफिक वायलेशन का बहुत बड़ा फाइन आप पर आ सकता है। लीगल अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। तो प्लीज इस बात को याद रखिए कि हमें ऐसे ऑफिशियल चैनल्स के ही थ्रू, ऑफिशियल टैक्सी सर्विसेज कंपनी के ही थ्रू जाना है जो कि रजिस्टर्ड है। ऐसा कोई

0: लाइसेंस टैक्सी की तरह, जो कि ट्रैफिक वायलेशन है, और ऊपर से आप एक रियाल दो रियाल बजाने के चक्कर में खुद को भी मुसीबत में डाल रहे हैं, क्योंकि जब कोई गलत काम कर रहा होता है तो उसमें आप भी जाकर जब उसके भागीदार बन जाते हैं, पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, तो आपके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात को समझिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए। आई एम श्योर आप समझदार हैं, इशारा काफी है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ने समझा दिया। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: नहीं, अब आपने बहुत कंट्रोल किया, अब एक बार फिर से मौका आ गया है। अरे पता है, वीकेंड पे मौसम जब ऐसा मिल जाए तो आदमी सोचता है यार एक बार अपनी जेट स्की लेके, यॉट लेके, अपनी बोट लेके, स्पीड वाली चले पानी में। पिछले दिनों मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन अब ये हट गई है। #974974 मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस कर दिया है कि फुल रिजम्पशन ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एक्टिविटीज शुरू हो गई है, और ये 5 जुलाई सुबह से ही शुरू हो गई, यानी कि आज सुबह से ही इसे अलाउ कर दिया गया है। और मिनिस्ट्री ने अर्ज किया है कि आपको हर उस मैरीटाइम रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो उन्होंने अपनी गाइडलाइन के थ्रू दिया है, एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ ही आप एक बार फिर से सेलिंग शुरू करेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सारी मैरीटाइम वॉयेजेस के लिए अलाउ किए गए हैं। लेकिन याद रखिए, पिछले दिनों ये रोक लगाई गई थी 29 जून के आसपास, जब हर तरह की मैरीटाइम एक्टिविटीज पर रोक थी, लेकिन अब फाइनली ये रोक हटा दी गई है और अब आप पानी में अपना छई छप्पा छई कर सकते हैं, एंड सारे सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो कीजिएगा, ये जरूर अर्ज किया है मिनिस्ट्री ने। और मुझे लगता है टाइम टाइम पर जब इस तरह का कोई रेगुलेशन आता है, कोई स्टेप लिया जाता है, तो हमें उसके साथ अबाइड करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, इससे हमारी आपकी सेफ्टी बढ़ती है। चलो जी, मौसम अब आपको आज ब्लू है, पानी पानी वाली फीलिंग दे रहा है, तो हम आपसे ये कहेंगे जाओ, मैरीटाइम एक्टिविटी अलाउ होगी। मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: चलिए फिलहाल हम सब गर्मी में डूबे हुए हैं। मतलब ऐसी जबरदस्त गर्मी में डूबे हैं भाई साहब कि घर से निकलते ही गाड़ी ऐसा लगता है जैसे आग का गोला चल रहे हैं, उसी में हम लोग एसी चलाए हुए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मौसम में सूरज चाचू कोई कोताही नहीं बरत रहे।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल, वेदर अपडेट में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप तक पहुंचानी है वो है एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का हमारे पास आना। यस, थ्रू आउट द वीक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जो है वो यहां तक ब्लो करेगी, स्पेशली मंडे 6 जुलाई से लेकर एंड ऑफ वीक आपको ये पूरी की पूरी धूल मिट्टी वाली लू जो है वो मिलने वाली है। इससे हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी भी कम होगी कुछ एरियाज में, एंड डस्ट है, अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो थोड़ा ध्यान रखना है। एंड इस पूरे दौरान गाड़ी वाड़ी सब आराम से चलाइएगा, एंड खुले में कोई भाई मजदूर भाई काम करे अगर सुबह 10 से 3:30 बजे तक तो प्लीज उसे बताइएगा कि ये नहीं करना है, और जो कंपनीज ऐसा करा रही हैं उन पे तो फाइन लगेगा ही। इस उम्मीद में कि आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं, कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड, मस्मोल ओवर आगे बढ़ता है। 89.6 मिर्ची 1 हरारा खतीर, इट्स हॉट।

0: Weather Check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future, call now 3100-0813.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
4: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
3: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
1: बॉलीवुड बोर्डल।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
5: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
6: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
5: Relative se advice lo to kehte hain.
7: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: मम्मा शू का आगे लेकर कौन ये गाना और मिर्ची घड़ी का टाइम बता दें 5:03 के करीब का
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे तो ये फिल्म पूरे 14 सालों के गैप के बाद आई है, लेकिन ये इस फिल्म का कह सकते हैं एक रीमेक वर्जन है। कॉकटेल जहां 2012 में आई थी कल्ट क्लासिक बनी थी, वही अब कॉकटेल 2 2026 में आई है और मार्केट में माहौल तो जरूर बना रही है। इन सब के बीच इस बार मामला शाहिद कपूर ने संभाला है एंड पिछली बार ये मामला सैफ अली खान ने संभाला था। इनके साथ रश्मिका एंड कृति शरण है शाहिद कपूर के साथ। क्या आप बता सकते हैं कि पिछली बार दोनों हीरोइनों के अलावा सैफ अली खान की मम्मी कौन बनी थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल जो आ गया है बस मौला गौरव आपसे लेकर इस बॉलीवुड स्पेशल में।
2: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
3: ओके सर।
0: तो याद रखिए सवाल बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर हम पिछली कॉकटेल की बात करें यानी कि साल 2012 में जो फिल्म आई थी ओरिजिनल वाली, उसमें सैफ अली खान की मम्मी का किरदार किसने निभाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, लेट सी कितने लोगों को याद है गुल्लू कपूर जो कि उस फिल्म का सबसे प्यारा बंदा था। गुल्लू कपूर, हाँ जी मुझे याद है, एक शानदार सीन होता है जहां पर वो घर में पार्टी करता है, अचानक से उनकी मम्मी आ जाती है। तो बताइए उनकी मम्मी का किरदार यानी कि सैफ अली खान की मम्मी का किरदार, गुल्लू कपूर की मम्मी का किरदार किस लेडी ने निभाया था, यही आपको बताना है 5001896 पर। यह है आज का बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट का सवाल, लेट सी कितने लोगों को याद है। जल्दी जल्दी अपना जवाब भेजिए वॉइस नोट में कि गौरव हमें लगता है ये उनकी मम्मी थी उस फिल्म में। मस्त मौला गौरव के साथ रहिए मिर्ची थॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vijet bala burka. Milci, burka.
1: हेलो,
2: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगामा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारेगामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है। मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती हैं।
2: ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारेगामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हो, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए। ऊ

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: ओ, मिल गई मंजिल मुझे।
0: ऊँ चाहिए। तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
4: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
3: अभी कॉल करें 3100813।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
3: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
4: 89.6
3: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आज के बच्चों के लिए तो मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, वो उनका प्ले जोन है। एक हमारा दौर था, मोहल्ले की हर बिल्डिंग हमारा प्ले जोन होती थी। आई स्पाई से लेकर चेन, विच कलर यू वांट, टिप्पी टिप्पी टॉप, सब खेला हमने। ये बच्चों से सब कुछ दूर हो गया, लेकिन उनके अंदर फिर से बहुत सारा प्यार जगाइए टॉयज के लिए, क्योंकि जो बच्चे इस बार घर नहीं जा पाए, DCC में आ चुका है कतर टॉय फेस्टिवल। यस, अब शुरुआत हो चुकी है। 31 जुलाई तक कतर टॉय फेस्टिवल का 4th एडिशन चलेगा, एंड बच्चों के लिए इस बार भी कुछ कमाल के जोन है। अगर हम यूथ जोन की बात करें, पबजी मोबाइल, पॉपी प्ले टाइम, चैंपियंस लैंड, ये बनाई गई है। वही बहुत सारे अरीना है जिसमें हॉट व्हील्स, पैकमैन भी है, और तो और बड़ी बात यह है कि फ्लिंटस्टोन्स, मिकी माउस, फैंसी लैंड, सब कुछ है। डिज्नी प्रिंसेस, फ्रोजन, क्यूटी पाई लैंड, लीलो एंड स्टिच, पॉ पेट्रोल, वन ऑफ माय फेवरेट दीज डेज। कुल मिलाकर ये वो जोन है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। जाइए एक बार तो मजा लेकर आइए, एंड थोड़े से, एंड मुझे लगता है बच्चों के लिए थोड़े से पैसे जेब ढीले कर अगर उनके अंदर बचपन में खिलौनों का प्यार फिर से जगा जाए तो कोई बुराई नहीं है। वरना बच्चों को आजकल यही लग रहा है मोबाइल ही उनके लिए असली खिलौना है। मम्मी पापा किसी भी पार्टी में जाएं, बच्चे सीधे आते हैं, पापा मोबाइल दे दो, मम्मी मोबाइल दो, मुझे खेलना है जी। उनको बताओ कि ऐसे खिलौने होते हैं, हमारे जमाने में यही सब खेलते थे, मोबाइल नहीं। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: आ गया आ गया आ गया, एक बार फिर से आपके साथ आ गया। देवी और सज्जन, देखिए मैंने एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा है एंड फिल्म कॉकटेल 2 के बारे में ये कहा कि ये फिल्म एक बार फिर से 14 सालों के बाद बनी है। हालांकि हीरो हीरोइन सब पिछली फिल्म से बदल गए, लेकिन अगर पिछली फिल्म की बात करें तो कमाल की फिल्म थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तरफ दीपिका पादुकोण, दूसरी तरफ डायना पेंटी एंड उनके साथ सैफ अली खान। लेकिन सवाल आज मैंने पूछा है सैफ अली खान, यानी कि उस फिल्म में गुटलू कपूर की मम्मी का किरदार किस हीरोइन ने निभाया था, यही आपको बताना है। 5000185000189 पर दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और मुझे बताइए कि फिल्म कॉकटेल 1 जो कि 2012 में आई थी, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे गाने थे, ओवरऑल फिल्म वॉज अ हिट, कल्ट क्लासिक बोलते हैं, उस फिल्म में सैफ अली खान की मम्मी का किरदार किसने किया था, यानी कि गुटलू कपूर की मम्मी कौन सी एक्ट्रेस थी। 5000186 पर मस्त मॉल और एक आखिरी बार आपसे सवाल पूछ रहा है। अगली बार आपके जवाबों के वॉइस नोट के साथ लौटूंगा, जल्दी जल्दी अपना जवाब भेजिए 5000186 पर वॉइस नोट कर। याद रखिएगा रिकॉर्ड करना है मैसेज। हाय गौरव, मैं ये बोल रहा हूँ और जवाब ये है मिर्ची, ये थॉट, आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी भेजो मैसेज।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिंद सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड पोर्टल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
6: entertainment. Qatar ka number one radio station.
7: 89.6 FM, Mirchi 1.
8: Mirchi 1.
7: It's hot.

0: हाँ जी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, लेकिन हम कुछ नहीं भूलते, सब याद रखते हैं, बस दोस्तों से लिया उधार भूल जाते हैं। हाँ जी, फिलहाल के लिए सवाल आपसे थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, जवाब देने की बारी आ गई है कि सबसे पहले जो कॉकटेल बनी फिल्म 2012 में, कॉकटेल, अब कॉकटेल 2 आ चुकी है, शाहिद कपूर, कृति शरण, रश्मिका मंदाना, कॉकटेल 1 में सैफ अली खान की मम्मी का किरदार किसने किया था, बता रहे हैं लोग?
1: हाय गौरव, दिस इज मनीष, एंड आंसर इज डिंपल कपाड़िया।
2: ओके, हाय गौरव, मैं अमित बात कर रहा हूं जी। कॉकटेल 1 में गुडकू की मम्मी का रोल डिंपल कपाड़िया ने।
0: ओके ओके ओके, इन्होंने कहा डिंपल कपाड़िया। इसके अलावा थैंक यू कहना चाहूंगा मैं कुछ और लोगों को जिन्होंने ये जवाब लिख कर भेजा है। दिस इज किरमानी, आई गेस डिंपल कपाड़िया बिल्कुल सही जवाब है। अनदर वन इन द हाउस इज फ्रॉम सुनील कुमार साहब, जिन्होंने कहा डिंपल कपाड़िया। वेल आई एम नॉट रॉन्ग, ये अब्दुल भाई है जिन्होंने लिखा डिंपल कपाड़िया। एंड इसके अलावा एक और है जिन्होंने भेजा है, सोनम कपूर, सुबह भेजा था, अभी भेजा है डिंपल कपाड़िया। यस, डिंपल कपाड़िया इज द राइट आंसर, लेकिन आपका वॉइस नोट मैडम चल नहीं रहा इसलिए मैंने प्ले नहीं किया, सॉरी। इसके अलावा बात करें, यस, जायद भाई ने लिखा है डिंपल कपाड़िया है, किसी ने लिखा है अरुणा ईरानी, भाई साहब ये कोई और वाली देख ली क्या आपने? वेल, इसके अलावा थैंक यू सो मच, ये नाम है मुस्तफा जो लिखा है करीना, नहीं डिंपल कपाड़िया, सॉरी, एक दिन पहले का आंसर है डिंपल कपाड़िया। वेल, कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों ने डिंपल कपाड़िया कहा है, इज द राइट आंसर, यस। कॉकटेल में वो शानदार किरदार डिंपल कपाड़िया जी ने निभाया था। फिलहाल के लिए बस फॉलो करो, अपना एक किरदार निभा रहा है, अच्छे गाने सुनाने का। अगला गाना हनी सिंह साहब लेकर आए, मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: मिर्ची हेल्प लाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

0: आरी आरी आरी नहीं आ गया है नाम है मेरा मस्त मौला गौरव। हाँ जी, और पिछले दो घंटे से आपको रोमांचित और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताने के बाद अब तीसरे घंटे की तरफ बढ़ते हुए जहां पर हम और आप मिलकर खेलते हैं जनाब, वो जिसे कहते हैं गानों वाली मिक्सी।
1: गानों की मिक्सी।
0: तो फिलहाल के लिए मस्फोलो गौरव गानों की मिक्सी से पहले घड़ी का टाइम शाम के 6:08।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, अब चलिए आज गानों की मिक्सी सुनकर बताइए कौन से दो गाने हैं।

हाँ जी, बहुत ही जबरदस्त दोनों गानों की मिक्सी में जो जूस बन के हमने निकाला, बेहतरीन निकाला। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए, कौन से दो गाने हैं।

5000-1896, इसमें से बस इतने हिंट दे रहा हूँ कि ऑस्कर तक पहुंचा मामला। 5000-1896, बताइए ये दो गाने कौन से हैं जो मैंने मिक्स किए हैं।

हाँ जी मस्त मोरो गौरव इंतजार कर रहा है 5000196 पर, आप नहीं बताएंगे तो हम आपके पास फिर से लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए जल्दी जल्दी गेस करो 5000196 पर मस्त मोरो गौरव को बताओ ये कौन से दो गाने, एंड तब तक आगे बढ़ाते हैं इस घंटे को मिर्ची पर। इट्स हॉट

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci, burka. हेलो
2: हेलो भाई राज, ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है, हैं?
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे कमाते
1: हैं?
2: तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से।
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फिरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
3: it's hot.
4: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
5: अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर इज मोर. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
8: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
9: हिट गाने
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सोनू निगम, आशीष कौर के बाद में बिजुरिया गाना चल गया, लेकिन हमारे मिक्सर ग्राइंडर भी चल गई है। यस, हम सुनाते हैं आपको एक साउंड जिसमें दो गानों की हम मिक्सिंग कर देते हैं।
1: गानों की मिक्सिंग।
0: हाँ जी, और आज के दो गाने कुछ यूं हैं।

5000-1896 पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, वॉइस नोट भी आ रहे हैं। कोशिश कीजिए जितने ज्यादा लोग बताएं हमें अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग फंस गए, एक गाना ही पकड़ पा रहे हैं, फिर ध्यान से सुनिए।

5000196 दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए, मुझे बताइए कौन से दो गानों को मैंने आज मिक्सी में चलाया है। 5000196 बस फॉलो, गौरव इंतजार कर रहा है अगली बार जवाब के साथ लौटेगा, लेकिन तब तक धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं मगरिब अज़ान की तरफ। मिर्ची सॉल्ट।

0: परंपरा टंडन की आवाज में गाना कहा, किसने सुनाया? चालीस घंटे गानों की मिक्सी चलाते हैं,
1: गानों की मिक्सी।
0: और यहाँ पर दो दो गाने मिलाए वो यूं थे। हाँ जी, और यही पूछा था कि बताओ ये दो गाने कौन से हैं, और जवाब आ गए।
2: हाय गौरव, फर्स्ट सॉन्ग स्लम डॉग मिलियनेयर से है, और सेकंड सॉन्ग जो है उसमें अर्जुन कपूर का सॉन्ग है, वो सुपरमैन सलमान द फैन।
0: ओके,
2: पहला वाला बड़ा हो गया जी। थैंक यू।
0: ओके,
3: हे गौरव, गुड इवनिंग। द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू प्लेड वाज नॉट टू नॉट टू, एंड द सेकंड वन इज द सुपरमैन फ्रॉम तेवर। Okay, thank you.
0: इसके अलावा दो और लोगों ने सही जवाब दिए हैं, वो सैम्स, हम आपका नाम बता रहे हैं, जिन्होंने लिखा है शायद फील कर रहे थे इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन सही बताया। यस, उनके दोनों गाने थे नाचो नाचो, मैं सुपरमैन सलमान द फैन, और बिल्कुल सही जवाब है, यही दोनों गाने को मिक्स किया था मैंने। यस, आज इन दोनों गानों को एक साथ मिलाकर मिक्सी में बना नया जूस। एंड फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, एंड अगला गाना नाचो नाचो मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Dosti kai ko sule madam. No sorry, no thank you.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

चाल शेकी शेकी संजू राठौड़ की आवाज में मराठी स्टाइल, ये एकदम जबरदस्त सॉन्ग कहाँ सुना। मेरे साथ मेरे शो शाम शानदार पर, जहां पर अब बारी आई है जेब की ताकत को टटोल कर आपको बताने की, क्योंकि पैसे में आज हम ध्यान दे रहे हैं। बारीकी से रेट थोड़े थोड़े कम हुए हैं, पर उतने भी नहीं, अभी भी चांसेस हैं अच्छे पैसे भेजने के। अगर एक कसूरी रियाल के बदले हम इंडियन रुपीस की बात करें, 26 रुपए 11 पैसे 26.11 INR, 1 कसूरी रियाल के बदले अगर हम श्रीलंकन रुपीस की बात करें 91.84, वहीं अगर पाकिस्तान रुपीस की बात करें जनाब वाहिद कसूरी रियाल के बदले 76.55 पाकिस्तान रुपीस, तपाई को नेपाल रुपीस का रेट छोड़ आजो 41.76 का रेट हाजू। हाँ जी भाई, घर भेजना 41.76 का बालचा रेट है। इसके बाद अगर बांग्लादेशी टाका बात करेगा बांधू, एक्टा का रियाल के बदले दादा 33.93 तो 33.93 बांग्लादेशी टाका का रेट थी। तो मस्त मोलो गौरव के साथ आग लगाना नैनो वालों, नीति मोहन की आवाज में मिर्ची पर सुना दिया आपको इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और कि पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
1: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अंजलि, बच्ची हेल्पलाइन बोल।
1: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा BF मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
0: आए, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: हाँ जी तुम ही हो बंधु सखा तुम ही अब जो इतना बंधु बनाए रहे तो आगे आपका बंधु एक पिक्चर थी जिसमें शक्ति कपूर डायलॉग बनाते थे हाँ जी नंदू सबका बंधु। फिलहाल शाम के 7:30 से ज्यादा
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे आज की रात जबरदस्त हॉट होने वाली है यस एज पर कतर मेट्रोल डिपार्टमेंट काफी ज्यादा ह्यूमिड एंड हॉट वाली फीलिंग आएगी एंड डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजी ये इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी से ही आसार दिखने लगे। इनफैक्ट बाहर निकलते ही चश्मा पहनने वाले लोगों को दिक्कतें आ रही हैं एकदम से वेपर्स एकदम आंखों के आगे। फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ नॉर्थ वेस्टर्ली विंड धीरे धीरे कतर में एंट्री मारने वाली है एंड कल से आपको ये भी मिलेंगी तो तैयार हो जाइए हवाओं की लू के थपेड़ों के बीच आपको कतर के आसमानों में थोड़े और ज्यादा धूल के कण दिखेंगे क्योंकि डस्ट भी लेके आ रही है। फिलहाल बस नहीं कहूंगा अपना ध्यान रखिए पानी पीते रहिए मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। इन सब के बीच लेबर लॉ में बहुत कुछ बदला है और इसके लिए बकायदा इकोनॉमी में कैसे कॉम्पिटिटिवनेस आए और लेबर रिलेशंस बैलेंस रहे इसको ध्यान में रखते हुए कुछ बड़ी चीजें की गई हैं और ये अमेंडमेंट्स लेबर लॉ नंबर 9 of 2026 है जो कि खुद कह सकते हैं इशू किए गए हैं एमएलए जैन शेख तमीम बिन हमद अल थानी सर से यस और ये लेबर लेजिस्लेशन को बदलेगा इस पर बहुत सारे नए क्लॉजेस आए हैं और कतर नेशनल विजन 2030 को अलाइन करते हुए ये बनाया गया। आई एम श्योर इससे मजदूर भाइयों के लिए लेबर लोगों के लिए और बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेंगी उनका काम और आसान होगा चाहे उनका एम्प्लॉयर हो उसके लिए भी बहुत सारी सहूलियतें हो जाएंगी। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट
1: मिर्ची फ्रेश माल
2: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

0: को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
1: अच्छा,
2: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
1: के पास है क्या ये सर्विस?
2: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
1: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
2: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
1: ठीक है,
2: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
1: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
2: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
1: ये क्या है भैया?
2: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
1: तो मशीन चलाने आती भी है
2: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे? देखिए
1: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
2: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
1: मजाक कर रहे तू मेरे से?
2: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी,
1: आई एम
2: सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गालियां नहीं सुन सकता सर, मैं
3: रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गालियां मत दीजिए यार।
2: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जिस काम के लिए तुमने गाड़ी ली है ना वही करो। हाँ जी, इलीगल कोई काम नहीं। वेल, बता दे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक एडवाइजरी रिमाइंड कराई है मोटरिस्ट को जो कि प्राइवेट व्हीकल नंबर प्लेट के साथ इलीगल टैक्सी चला रहे हैं। #974974 मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐसे लोगों को याद दिलाया है कि आपने व्हीकल को जिस भी पर्पज से लिया है, अगर उस पर्पज के अलावा आप इसको यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग देम एज टैक्सीज, तो याद रखिए ये एक ट्रैफिक वायलेशन का बहुत बड़ा फाइन आप पर आ सकता है। लीगल अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। तो प्लीज इस बात को याद रखिए कि हमें ऐसे ऑफिशियल चैनल्स के ही थ्रू, ऑफिशियल टैक्सी सर्विसेज कंपनी के ही थ्रू जाना है जो कि रजिस्टर्ड है। ऐसा कोई भी इंसान जो कहता है हेलो घर जोड़ दें, हाँ जी चलेंगे, इनसे थोड़ा बच कर रहिए। पहली बात तो ये प्राइवेट व्हीकल को यूज कर रहे हैं लाइसेंस टैक्सी की तरह, जो कि ट्रैफिक वायलेशन है, और ऊपर से आप एक रियाल दो रियाल बचाने के चक्कर में खुद को भी मुसीबत में डाल रहे हैं, क्योंकि जब कोई गलत काम कर रहा होता है तो उसमें आप भी जाकर जब उसके भागीदार बन जाते हैं, पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, तो आपके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात को समझिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए। आई एम श्योर आप समझदार हैं, इशारा काफी है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने समझा दिया। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: नहीं, अब आपने बहुत कंट्रोल किया, अब एक बार फिर से मौका आ गया है। अरे पता है वीकेंड पे मौसम जब ऐसा मिल जाए तो आदमी सोचता है यार एक बार अपनी जेट स्की लेके, यॉट लेके, अपनी बोट लेके स्पीड वाली चले पानी में। पिछले दिनों मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने रोक लगाई थी लेकिन अब ये हट गई है।
1: #974974
0: मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस कर दिया है कि फुल रिजम्पशन ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एक्टिविटीज शुरू हो गई है और ये 5 जुलाई सुबह से ही शुरू हो गई, यानी कि आज सुबह से ही इसे अलाउ कर दिया गया है। और मिनिस्ट्री ने अर्ज किया है कि आपको हर उस मैरीटाइम रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो उन्होंने अपनी गाइडलाइन के थ्रू दिया है, एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ ही आप एक बार फिर से सेलिंग शुरू करेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सारी मैरीटाइम वॉयेजेस के लिए अलाउ किए गए हैं। लेकिन याद रखिए पिछले दिनों ये रोक लगाई गई थी 29 जून के आसपास, जब हर तरह की मैरीटाइम एक्टिविटीज पर रोक थी, लेकिन अब फाइनली ये रोक हटा दी गई है और अब आप पानी में अपना छई छप्पा छई कर सकते हैं। एंड सारे सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो कीजिएगा, ये जरूर अर्ज किया है मिनिस्ट्री ने। और मुझे लगता है टाइम टाइम पर जब इस तरह का कोई रेगुलेशन आता है, कोई स्टेप लिया जाता है, तो हमें उसके साथ अबाइड करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, इससे हमारी आपकी सेफ्टी बढ़ती है। चलो जी, मौसम अब आपको आज ब्लू है, पानी पानी वाली फीलिंग दे रहा है, तो हम आपसे ये कहेंगे जाओ मैरीटाइम एक्टिविटी तो अलाउ होगी। मिर्ची

0: Hollywood, Bollywood, Bordai.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
3: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
2: Sleep well. Oh ho ho ho. फिर तो fit होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Bordal. Bollywood Bollywood Bollywood Bordal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार.
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

स्वैग से तो हमारा कतर भी सबका स्वागत करता है और ऐसे ही स्वागत होगा दुनिया के 32 देशों की बास्केटबॉल टीम का। हाँ जी, 32 नेशंस एंड वन ड्रीम, दैट इज फीबा वर्ल्ड कप जीतना। फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का वर्ल्ड कप 2027 में हमारे कतर में होने जा रहा है। दुनिया की 32 टीम्स एंड सबका सपना होगा बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप जीतने का, एंड उसके लिए कतर ने तैयारियां जोर शोर से पूरी कर दी है। एंड आई एम वेरी श्योर होने वाले इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होंगे जब हम बिल्कुल वैसे ही फील करेंगे जैसा हम फीफा वर्ल्ड कप के टाइम में फील कर रहे थे। फैंस होंगे, उनका फेवरेट खेल बास्केटबॉल होगा एंड ढेर सारी यादों का जखीरा बनेगा। इस उम्मीद में कि हम और आप हर दिन के साथ अब कतर में और बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स होते देखेंगे जो कि हम बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए करेंगे। मस्त बोलोग और ले रहा अलविदा। और आज रात फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए भाई, सच्चाई यही है कि हम तो ब्राजील के सबसे बड़े समर्थक हैं एंड आई वांट ब्राजील टू विन, लेकिन क्योंकि इस बार नॉर्वे की टीम ने सबको चौंकाया है एंड उसमें सबका फेवरेट हालैंड है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस टीम का भी सपोर्ट करूं। पहली बार वर्ल्ड कप में जिस तरह से इसने सबको चौंका दिया है, मुझे फीलिंग यही आ रही है कि क्या पता आज हालैंड की टीम कुछ नया कमाल करे और अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में ले जाए हालैंड। ऑल द बेस्ट टू ब्राजील एंड हालैंड। एंड यहां से वर्ल्ड कप अब एक आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से फाइनल्स, ज्यादा दिन बचे नहीं है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स। मस्त बोलो गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम। कौन जीता कौन हारा ये बताने के लिए मिर्ची पर, इट्स हॉट अभी भी मस्त।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
1: तुम्हें जो पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

0: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: Indie Top 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गाने हैं, उसमें एक नई एंट्री है। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना होने वाला है, अ स्पेशल स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है, शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है, साडी सुन बाय हर्ष नुसी। हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है, चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 10.
2: हाँ चुप कर लंघ जावे, कोल दी तू संघ जावे, को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार. हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9. इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ. On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mujhe follow kare. Mera handle is at RJ Kanika. Follow karna bilkul free hai. At RJ Kanika par koi gaane suggest karne hai, koi baatein batani hai, bindaas aake hit me up. Jo agle wala gaana hai, usse is countdown pe pure 23 hafte ho chuke hain. It's a Coke Studio Bharat song. जितना खूबसूरत ये गाना है उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है. आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है. उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट अनूप जैन एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक. बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ. प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है. कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन, जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से. एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग. एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से. That's why this song sounds so incredible because इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है. पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जम करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. You are listening to Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rambala. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Sir, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: 2 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
3: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
3: कोई बोल रहा
4: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
11: थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
12: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
13: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ पाइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
14: तो सिर्फ छोरे करें,
15: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
16: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
17: कम है के?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
18: 89.6
0: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
18: Indie Top 10
0: Kanika ke saath on Mirchi
19: number 6.

0: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of superhit songs, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ. मेरा हैंडल इज @RJKanika. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू शाइन स्पॉटलाइट ऑन आर इंडी पिक ऑफ द वीक. एंड आज का गाना स्पॉटलाइट इज गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशन देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वॉजेंट लाइक सच अ रेगुलर डील एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्यूटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी सॉन्ग. कॉज एक तरफ है येलो डायरी, वन ऑफ द बेस्ट इंडी पॉप बैंड्स दैट वी हैव सीन. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी. कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग है शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहां एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहां कोई बनावट के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग है शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस

Dude, this is the song जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे absolute top favorite vocalist बन गए थे. What a voice, goosebumps आ जाते हैं उनकी गाने के थ्रू. जो feelings बयां करना जा रहे हैं ना, वो into 10 times feel होती हैं. राजन बत्रा की आवाज़, Yellow Diaries का गाना featuring शिल्पा राव, that was Rose Rose. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी playlist में add कर लीजिए. One of those pop songs जो उतने ही बड़े हुए जितने film के गाने होते हैं. Now countdown पे आगे बढ़ने से पहले, it's time for इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनेका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनेका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका. एंजॉय. नंबर 5.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM
0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi
9: Number 4

0: आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

0: द ओजी बाय कुमार सानू कॉल तेरा मेरा प्यार। इस गाने के बाद इतने सारे मैसेजेस, कहानियां, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के। एंड अश्का और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए। वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली। जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं। द सॉन्ग वी गोना फीचर दिस वीक इज
1: मोहब्बत।

The OG pop star song गाने का नाम है मोहब्बतें लुटाऊंगा by अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, like एक pop anthem बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था। कॉल करके SMS करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बतें लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना दिस इज मोहब्बतें लुटाऊंगा ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वॉज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आर द लिरिक्स, समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो. अशकाय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा, फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा. नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर. 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री?
4: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन. ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
3: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल. Only on Mirchi. It's hot.
5: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं,
6: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा.
5: Relative से advice लो तो कहते हैं,
7: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा.
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो.
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.
0: इंडी टॉप 10
2: कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
10: मिर्ची सुन रहे हैं आप. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो, गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप. अक्सर लोग गाने सुन के गानों का नाम भूल जाते हैं और मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कनिका वो गाना नंबर 5 कौन सा था, जो गाना नंबर 9 पर बजाया वो कौन सा गाना था. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप. गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन. उसके बाद अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी वॉज ऑन गाना नंबर 9. गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है.
11: कायरे जो थे वो शायर बने.
10: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7. फिर दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6.
12: जिधर तू पीछे या तनगीना चौपर जोगी डब दबीना.
10: संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5. कोक स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैविट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4. दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3. And the top 2 songs of the week, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन. ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है. सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 2.

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi helpline?
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
2: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

0: किशोर कुमार के सबसे बड़े बेटे अमित कुमार, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनके एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सुंदर गाने से जुड़ा एक इंसिडेंट उन्होंने एक टीवी शो पे शेयर किया था, सुनिए।
1: एक गाना था, मैं ही गाया था, रोज रोज आंखों तले। वो गाने में तीन अंतरे आशा जी की थे, टॉकिंग अबाउट 1984-85 में जीवा फिल्म रिलीज हुई थी। तो अभी हीरो जो है संजय दत्त, उसको जब मालूम पड़ा उनको कि पूरे गाने में कुछ नहीं कर रहा लड़के मंदा की नहीं गाएगी और मैं खड़े रहूंगा ऐसा करके, तो बोला मेरे को एक अंतरा दो। तो उनके वजह से एक अंतरा आया, थर्ड अंतरा जैसे हुआ तो पंचम दा बोले ठीक है किशोर दा को फोन करो यार। तो किशोर दा का नाम सुन के डड्डू से किशोर दा क्यों, ठीक है चलो अमित को फोन करो यार। पंचम दा ने फोन किया और बाबा ने उठाया, हेलो आपका लड़का क्या कर रहा है? बोलो तो मालूम नहीं सोता है वो, बोलो उसको जगाए उसको गाना मिल गया। तो बाबा बोले पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ, बोले आपका बजट ही नहीं है।
0: ये बढ़िया था फिल्म मेकर्स का है, बजट है तो पिताजी को साइन कर लो, बजट नहीं है तो बेटा जी को साइन कर लो। खैर ये सब छोड़ो, ये सुंदर सा गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्ज
5: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
3: कोई बोल रहा
4: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल
3: रहा
4: हूँ, आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
11: थैंक यू।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
13: 89.6
1: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: पिता किशोर कुमार के साथ उनकी शुरुआती यादें। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या मेमोरीज शेयर की थी।
1: जब 3-4 साल की उम्र में मुझे पता चला, जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, के यस ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये है, अरे ये तो बम्बई है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है, छोटा सा घर है, और ये आदमी जो मैं देखता हूँ रोज गाड़ी में आता है और आधी मूछें लगा के मेकअप करके आके खाना खा के लंच टाइम में चला जाता है, ये कौन है। तो सोचता रहता था कौन है। तो एक दिन मैंने अपने माँ से कहा कि कौन है आदमी, माँ ये कौन है, तेरा बाप है। ऐसा मुझे बचपन में धीरे धीरे जब होश संभाला तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ माई चाइल्डहुड, दिस इज़ माई डोमेन, यू नो, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। तो ये मुझे याद है छोटा छोटा, मतलब कि यू नो देव साहब आते थे काफ़ी पिताजी से मिलने, वो उस वक्त, यू नो दीज आर थिंग्स आई रिमेम्बर।
0: वेल, अमित कुमार की कुछ और ब्यूटीफुल मेमोरीज साथ में उनकी जर्नी भी सुनेंगे यहीं पर मिर्ची पर पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और फिलहाल तो ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन का कॉम्पोजिशन, मूवी का नाम लव स्टोरी।
2: देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा।
0: वेल, अमित कुमार की कुछ और ब्यूटीफुल मेमोरीज साथ में उनकी जर्नी भी सुनेंगे यहीं पर मिर्ची पर पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और फिलहाल तो ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन का कॉम्पोजिशन, मूवी का नाम लव स्टोरी।
2: देखो

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
12: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: अमित कुमार जब 8 साल के थे तो उनकी मदर रूमा गुहा और उनके फादर किशोर कुमार का डिवोर्स हो गया। तो अमित कुमार अपनी मदर के साथ कलकत्ता में रहते थे और किशोर कुमार बॉम्बे में। फिर कुछ ऐसा मैटर हो गया कि इनकी मम्मा ने इनके फादर से किशोर कुमार से इनकी शिकायत लगाई और किशोर दा को कलकत्ता आना पड़ा। वो क्या हुआ था सुनिए, एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने शेयर किया था।
1: जब मैं 17-18 साल का था कलकत्ते में, उन दिनों 1970 में मैं कलकत्ते में गली गली में गाना शुरू किया। मैंने उत्तम बाबू के जो इलाका भवानीपुर जो आज भी है, उनके वहाँ पे दुर्गा पूजा तो मैं गया था। तो उस वक्त मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग मिलके ग्रुप एमेचर म्यूजिशियंस, मैंने प्रिपेयर किए थे कुछ 5-6 गाने, बट आई हैड टू सिंग अबाउट 10 सॉन्ग्स। जिसे कहते हैं आई शेड माई इनिबिशंस, स्टेज फ्राइड निकल गया और इतना अच्छा गाया मैं। तो वो उसके बाद मैंने जो शुरू किया प्रोग्राम कलकत्ते में, तो वो पिताजी को पता चला। माँ ने फ़ोन करके कहा कि वो तो पढ़ाई लिखाई में एकदम मन नहीं है, इधर उधर घूमता फिरता है, आपके आप ही के गाने गाता है। तो पिताजी बहुत खुश हो गए, भाई वेरी गुड वेरी गुड, मैं आता हूँ कलकत्ता।
0: वेल, किशोर दा कलकत्ता पहुंचे और अपने बेटे को बॉम्बे लेकर आ गए। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
4: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स I feel is the mantra for your fitness. You do everything, but do it in moderation, and do it what makes you happy.
3: Health tip आपने दिया एकदम class, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
1: Bollywood bol dal, Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: अमित कुमार जब 17-18 साल के थे तो कलकत्ता में अलग अलग प्रोग्राम्स में गाने गाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बात से इनकी माँ थोड़ी सी परेशान होने लगी। उन्होंने किशोर कुमार को फोन किया बॉम्बे में कि भाई देखिए आपका बेटा तो रिलीजियस प्रोग्राम्स में भी फिल्मी गाने गाता है और आपके ही गाने गाता है, पढ़ाई लिखाई ये करता नहीं है, अब आप ही आके देखिए इसको। और किशोर दा पहुंच गए कोलकाता। फिर क्या हुआ सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: तो कलकत्ता है तो उन दिनों मेरा एक प्रोग्राम था रविंद्र सदन में। He saw the program. He came specially to see the program. तो मुझे कहा कि when you'll go on the stage, you won't get nervous, no? Because I'll be sitting in front of you. बोले why? मैं उन्होंने तो कहा मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। बोले नहीं लेकिन क्या होगा कि तुमको disturb हो जाएगा। तुम एक काम करो मेरे को सामने सीट मत देना। तो मुझे कहीं स्टेज के पीछे कहीं बैठाओ। क्योंकि सामने मैं बैठूंगा तो कोई तुम्हारा गाना सुनेगा नहीं। तो he was right. तो हमने वैसे ही किया। हमने उसको जहाँ से लाइटिंग होती है ना ऊपर वहाँ पे बैठा दिया। अब मैं गाना गा रहा हूँ। अब वो वहाँ से देख रहे हैं मुझे। He is enjoying. I broke the ice. तो योडलिंग किया। वो इतने खुश हुए। वो मेरे माता जी से कहा कि तो वंडरफुल बहुत अच्छा गाता है उसको बॉम्बे भेजो।
0: तो इसी तरह लड़का बॉम्बे आ गया अपने प्लेबैक सिंगिंग के करियर की शुरुआत करने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
2: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: 1970 की बात होगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जब किशोर दा को अपनी एक्स वाइफ रूमा गुहा से पता चला कि उनके बेटे अमित कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, यहाँ वहाँ प्रोग्राम्स इवेंट्स में गाने गाते फिरते हैं, किशोर दा कलकत्ता पहुँचे, अपने बेटे का एक इवेंट अटेंड किया, उनको गाता देख कर खुश हो गए और उनको बॉम्बे ले आए। वहाँ पे क्या हुआ, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: उसके बाद मुझे बॉम्बे लाए, यहाँ पे उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम रखा, डैडी किशोर एंड सनी अमित टुगेदर ऑन स्टेज, वेरी इंट्रोड्यूस्ड मी 1971। बोले देखो ये तुम्हारा पहला, मैं तुम्हें स्टेज पर प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ऐसा करना कि मैं गाना गा रहा हूँ तुम बजा रहे हो, तो मैं जैसे गाना शुरू करूंगा तुम वहां से उठ के आके मेरे को कंधे पे टैप करोगे और मैं घूमूंगा एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू। तो वो गाना था फिल्म दो चोर करके, एक फिल्म रिलीज हुई थी उसमें गाना था मेरी जान कहना मानो, तो वो जैसे वो गाना शुरू किया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हो गया, नहीं थी सेड मेरी जा कहना मानो, तब तक मैं आ गया, उठ के आके तो ऐसा किया, दोनों घूमा, तो मैंने कहा मेरे बाप अब तुम जाओ, मुझको गाने का मौका तो दो, तुमने दिया करके।
0: Well, बाप बेटे की इस जुगलबंदी का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गरम हूँ, अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर। हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
3: अच्छा,
4: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
3: के पास है क्या ये सर्विस?
4: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर। जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
3: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस
4: का? सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
3: और ठीक है,
4: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
3: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
4: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया। अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
3: ये क्या है भैया?
4: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
3: तो मशीन चलाने आती भी है
4: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे? देखिए
3: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
4: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
3: मजाक कर रहे तू मेरे से?
4: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर। मैं
5: रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
4: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया है। डबोगे
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
7: इट पटक।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
9: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
10: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
11: हिट गाने
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM Mirchi 1,
14: it's hot.
15: Purani
0: Jeans with Charu, only on

0: टीनेज में जब अमित कुमार में सिंगिंग के लक्षण दिखाई देने लगे तो किशोर दा उन्हें कलकत्ता से बॉम्बे ले आए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जब बॉम्बे ले आए तो बकायदा एक सिंगिंग इवेंट में, एक प्रोग्राम में किशोर दा ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए अमित कुमार ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: बॉम्बे आ गया पिताजी के साथ तो उनके फिल्मों में गाता था ही मैं। बाहर पूछते थे सब, लक्ष्मी जी प्यारे भाई तो सब पूछते थे कि वो गाता है, गाता है। तो लक्ष्मी जी तो कमाल कमाल का, पिताजी को बोलते थे मैंने सुना अमित गाता है। बाबा बोला हाँ वो गाता है, मुड़की उड़की मारता है। जब बाबा मुझे बोलते लक्ष्मी ने ऐसा क्यों पूछा मुड़की उड़की मारता है, तो मुझे बोला मुझे कुछ आता ही नहीं, आई वॉज रॉ यू नो। कहते मैं तो कुछ मालूम नहीं मुझे। बोले कुछ नहीं मालूम की बात नहीं, तुमको अगर गाना सीखना है तो पहले सहगल साहब के गाने प्रैक्टिस। तो मैंने बोला सहगल साहब नेजल, बोले नहीं ऐसा नहीं है, ही वॉज अ वेरी बिग सहगल साहब भक्त। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि देखो पहले से क्रिटिसाइज नहीं करने का, पहले तुम सहगल साहब के गाने सुनो, ये 3 गाने मैं तुम्हें देता हूँ, इसको प्रैक्टिस करो। तो मुझे तब मालूम पड़ा कि इट इज नॉट इजी टू सिंग सहगल साहब सॉन्ग्स। तो फिर मुझे ऐसे करते करते इंटरेस्ट उन्होंने जगाया।
0: चलिए इसी बात पे इंटरेस्टिंग सा गाना सुन लेते हैं अमित कुमार की आवाज में, आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने गाना लिखा है, मूवी का नाम तेरी कसम। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: हॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: अरे बांगड़ू तो संगीत सीखेगा रे, मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अर्ली 70s में जब किशोर दा को रियलाइज हुआ कि उनके बेटे में टैलेंट है तो उसे कलकत्ता से बॉम्बे ले आए। अमित कुमार ने पहले किशोर दा की फिल्मों में गाना शुरू किया। फिर और म्यूजिक डायरेक्टर्स जब अमित कुमार के बारे में पूछताछ करने लगे तो ये भी पूछने लगे कि क्या वो क्लासिकल गाने गा पाएगा। एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: मैंने कहा कि मैं क्लासिकल सीखूंगा एक दिन, तो वो हंसने लगे एकदम से। पिताजी के ये थे, वो भी क्लासिकल उतना मतलब वो सुनते थे क्लासिकल बचपन से बहुत। मैंने सुना कि ही यूज्ड टू गो फॉर दीज म्यूजिकल शोज आल्सो, विलायत खान साहब, बड़े गुलाम अली सब देखते थे, रविशंकर। तो उन्होंने कहा मना दा को फोन किया। तो मना दा को फोन करके बोला, मना दा मेरा लड़का बोलता क्लासिकल सीखा, तो वो भी हंसना शुरू कर दिया, भेज दो मेरे पास। मना दा मुझे देखते ही हंस रहे थे, तू क्लासिकल गाएगा? बोले क्यों, मैं गाने? बोले ठीक है, सीरियसली? बोला हाँ। तो ही अपॉइंटेड गुलाम मुस्तफा खान साहब, उनके साथ मैं 6 महीना सीखा, रिलीजियसली सीखा, लेकिन कुछ घुसा नहीं अंदर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला मैं क्या कर रहा हूँ? तो पिताजी बोल रहे, मैं बोला था ना कि तेरे पेशेंस है नहीं, इतना इजी नहीं है क्लासिकल। उस एज में क्या होता है ना, यू आर नॉट सीरियस।
0: तो ठीक है, फिर एक हल्का फुल्का लाइट सा गाना सुन लेते हैं यहाँ पे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Bollywood, only on Mirchi. It's hot.
2: Milind Soman, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट। I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
0: Only on Mirchi, it's hot.
4: Mirchi one, it's hot.
0: Purani Jeans. With Charu, only on Mirchi.

0: अर्ली 70s में प्लेबैक सिंगिंग में करियर बनाने अमित कुमार कलकत्ता से बॉम्बे आ गए. ऑफकोर्स किशोर दा उनको लेकर आ गए. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. तब इन पर धुन सवार हुई कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सीखना है. इन्होंने 6 महीने बड़ी शिद्दत से सीखा भी, लेकिन उसके बाद न हो पाया. पर उसके बाद हुआ क्या, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या शेयर किया था.
1: उस एज में क्या होता है ना, यू आर नॉट सीरियस. लेकिन पैरेलली मैं उनके साथ शोज करता रहा. एक होता ना डर, वो स्टेज का वो फ्राइट निकल गया. और फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स खुद, जैसे पहले मुझे गाना गवाया किशोर कुमार के घर के बाहर, मुझे गाना गवाया सपन जगमोहन. एक फिल्म बनी थी रामसे ब्रदर्स की, दरवाजा, उसमें गाना था. दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग. पिताजी आए थे रिकॉर्डिंग में, महबूब स्टूडियो में विश करने आए थे. गाना बहुत अच्छा गाना था. होश में हम कहाँ

0: अच्छा गाना था।
1: वेल, इनका ये गाना तो 1973 में रिकॉर्ड हुआ था और फिल्म जाके 1978 में रिलीज हुई थी, लेकिन हम यहाँ पे सुनेंगे वो गाना जिसमें मैंने अमित कुमार साहब की आवाज पहली बार सुनी थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: अमित कुमार ने अपनी प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत अपने फादर किशोर कुमार की फिल्मों से की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बाद फिर और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी इनको अप्रोच करने लगे। सबसे पहले सपन जगमोहन ने इनसे 1973 में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद क्या हुआ, एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने ये शेयर किया था।
1: सेकंड सॉन्ग मदन मोहन, किशोर तेरा लड़का गाना गाता है, तो पिताजी बोले जाओ मदन मोहन का गाना गाना है। आशा जी के साथ डुएट था, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था। है शाम बड़ी मतवाली, है शाम बड़ी मतवाली और आसमान पे लाली, इस लाली पे रंग तेरा, जैसा सिखाते ना, गुलाबी हो गया। मदन जी, मैं गुलाबी हो, बोले वाह वाह वाह, कितना अच्छा किशोर का बच्चा, अच्छा गाता है। उसके बाद थर्ड नंबर हुआ सलील चौधरी। वो पिक्चर पता नहीं बनी या नहीं बनी मुझे मालूम। वो गाना ऐसा था, हमको किसने जाना है, हम किसी को क्या जाने, हमको किसने माना है, हम किसी को क्यों माने, वी आर फ्री यू गो टू हेल। उसके बाद एक फिल्म आई जिसमें कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट जय कुमार पाटे, उन्होंने मुझे गवाया। वो फिल्म थी जान हाजिर है, जिसमें शेखर कपूर हीरो थे, विजय आनंद गोल्डी आनंद, विजय आनंद साहब प्रोड्यूसर थे। नवकेतन की फिल्म जान हाजिर है, वो भी पिक्चर फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे को बुक।
0: वेल, इन सब के बाद इनकी लाइफ में आया इनका जैकपॉट गाना, जिसके बारे में करेंगे बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्च।

0: किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस गाने से जुड़ा एक इंसिडेंट अमित कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था, सुनिए।
1: उस वक्त ऐसा हुआ कि एक दिन रिहर्सल पिताजी करने गए पंचमदा के घर, तो मुझे कहा कि तू तो पंचम का बहुत बड़ा भक्त है ना, बोला चल रिहर्सल है।
2: चलो।
1: तो वो गया मैं रिहर्सल में, अभी भी याद है मनादा भी थे वहाँ पे, मनादा और पिताजी का एक डुएट था एक, उसका रिहर्सल। तो मैं बैठा था, तो मैं तो उन्हीं को देख रहा था, पंचमदा को देख रहा था, हारमोनियम बजा रहे। बाद में उन्होंने मुझे देखा, बोला अरे अमित कैसा है तू, मैंने सुना तू गाना गा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड गाना सुना। तो मैं एकदम घबरा गया, तो मैंने गाना गाया, झुमरू ही गाया मैं, बहुत बकवास गाया था मैं, मतलब नर्वस हो गया था। तो जब वापस घर आ रहे थे तो गाड़ी में पिताजी ने कहा कि
3: तेरा चांस गया,
1: स्टार्टेड ही वाज वेरी अनहैप्पी यू नो। शाम को फोन आया, बाबा ने उठाया, अरे पंचम क्या हुआ, बोले दादा अमित को कल भेजो मेरे पास फिल्म सेंटर, तो गाना गवाना है। तो मे बी ही वाज टेस्टिंग माय वॉइस।
0: इस गाने के बारे में भी करेंगे बात, लेकिन अभी वो गाना सुनेंगे जिसमें बड़ी सारी फैमिली वाइब्स है, क्योंकि अमित कुमार किशोर कुमार की आवाज है, आशा भोसले जी की आवाज है, कॉम्पोजिशन RD बर्मन की। ये गाना लिखा है गुलशन बावरा ने, मूवी का नाम कस्मे वादे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Mirchi. Mirchi stories.
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन।
12: इट्स हॉट।
13: पुरानी
14: जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: अमित कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो है बालिका वधू फिल्म का गाना बड़े अच्छे लगते हैं। सुनिए आरडी बर्मन के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में अमित कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: बिकॉज बालिका वधू वाज बीइंग प्लान्ड फिल्म, तो उनको सचिन के लिए यंग वॉइस चाहिए था। उनके घर गया सवेरे, उन्होंने मुझे गाड़ियां बैठाया और लेके गए फिल्म सेंटर पे, गाना सिखाया एंड बड़े अच्छे लगते वॉज रिकॉर्डेड 1974 एंड में। बड़े

0: मैंने उस गाने का नाम भी रखा है, माय ब्रेड एंड बटर सॉन्ग। तो उसी गाना से मेरा एक फाउंडेशन तो जरूर हुआ। और पिताजी बहुत पीछे पड़ते थे, जब भी कोई स्टेज शो हो तो जैसे पिताजी के बाद मुझे गाना है, तो उस तक मेरा यही एक ही गाना था, तो मैं जाके बड़ा बकबक करता था स्टेज पर, अब मैं आपके सामने जो गीत पेश करूंगा, ये मुझे ऐसा किया था, ऐसा किया था, बड़ बड़ बड़ पीछे विंग्स में पिताजी खड़े होकर बोले, गाना गाता कोई को नहीं, इतना बकबक कर रहा। फिर मैंने बड़े चक्के तो वहां से बड़े
1: तो बड़े के चक्कर में इस छोटे को बड़े से काफी पड़े हैं। सुन लेते हैं ये आइकॉनिक गाना, रिटन बाय आनंद बख्शी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: बड़े

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Govinda, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
3: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 1976 की फिल्म बालिका वधू का आइकॉनिक गाना बड़े अच्छे लगते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अमित कुमार के करियर का ये टर्निंग पॉइंट माइलस्टोन गाना था, लेकिन उनके हिसाब से सही मायने में उनको सक्सेस किस गाने से मिली? एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: सक्सेसफुल हुआ मैं मेरे ख्याल से 1980 में लव स्टोरी एक फिल्म बनी थी जिसमें सब गाने हिट हुए, याद आ रही है, देखो मैंने देखा एक सपना, कुमार गौरव के साथ मेरा टीम हो गया, अगेन पंचम दा ने गवाया मुझे, एंड ही यूज्ड टू हेट द सॉन्ग्स ऑफ लव स्टोरी, खुद म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा के खुद के ट्यून, बट ही यूज्ड टू हेट, वो मुझे बोलते थे क्या क्या ये गाना तेरे को पसंद है, मतलब कौन सा, याद आ रही है, मतलब बाबा तुम्हारा है, इट इज यू, मतलब देखना एक नहीं चलेगी, ऐसी चली गाना। फिर मैंने उनको फोन करके बोला आप बोलो, चुप ठीक है, तू तो स्टार बन गया। और आफ्टर माय फादर ही वाज द पर्सन हु रियली पुट मी देयर, चल कम ऑन।
0: वेल, इस गाने के लिए अमित कुमार को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो सुन लेते दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, थोड़ा सैड है लेकिन उदासी में भी कितनी खूबसूरती होती है। ये उन गानों में से एक है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना होते हुए भी आपको ब्रेकअप का एहसास दिला देता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची